0: जैसे सरस्वती माता की हाथ में, हमारा तो सारे इंस्ट्रूमेंट देवी देवताओं की से ही प्रचलित रूट से आए। तो मैं बीना भी देखा, आप यकीन मानिए बांस का बीना है, पहले जो डाट बनाया जाता था वो बैम्बू का, क्योंकि बैम्बू पूरा अंदर से हॉलो है, उसका रेजोनेंस जैसे लकड़ी में आपको उसको खुदाई करके अंदर से आपको शेप देना पड़ता है, बैम्बू में वो एक इनबॉर्न जो होता है वो शेप पहले से ही है। इसीलिए मैं ये चिंतन रखते हुए मैं भी मेरा दिशा को आगे बढ़ाया और भी इंस्ट्रूमेंट, बैम्बू से मैं तबला बनाया, बैम्बू से मैं गिटार बनाया, बैम्बू से मैं सितार, मतलब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को मैं अलग से बैम्बू से इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को चेंबर को मैंने चेंज करके देखा इसका रेजोनेंस का व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन।
1: सुभाषिष जी, आपने चूँकि बताया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो पीएचडी में आपका जो विषय है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
0: पीएचडी का मेरा जो विषय है वो एम्बिडेक्स्टर आर्टिस्ट एंड इसका जो हिस्ट्रिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, मतलब मैं खुद ही एम्बिडेक्स्टर प्लेयर हूँ, मतलब मिंटू से चेंजिंग पोजिशन ऑफ द साइट इन माई इंस्ट्रूमेंट, मैं दोनों हाथ में बजाता हूँ लेफ्ट एंड राइट। लेकिन मैं शुरुआत में मैं ये सोचा जो एम्बिडेक्स्टर प्लेइंग मतलब सिर्फ कलाकारों की ऊपर करो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का, इसके बाद मैं जैसे ही हमारा बीसी मैम से इसको लेके डिस्कस किया, उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया, जो ये है खैरागढ़ मैम, उन्होंने खुद ही म्यूजिशियन है, सितार प्लेयर है लाबली शर्मा मैम, तो उन्होंने बच्चे को हर चीज़ों में उन्होंने उनका मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने एक चीज़ मुझे बुलाया एक दिन, मुझे बोला तुम्हारा ये जो काम है इसको ऐसे करके दिशा दो ताकि सारे आर्ट फील्ड को कवर करे, और ये एक अच्छा सलाह था उनका, तो नॉट ओनली म्यूजिशियन बट ऑल्सो अदर आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में कई लोग दो हाथ में पेंटिंग करते हैं, दो हाथ में कुछ लोग लिखते हैं, तो उनकी एक निर्देश बोल सकते या गाइडलाइन, तो उसमें उसके चिंतन रखते हुए मैं इसको पूरा आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा इसका हिस्ट्रिकल एनालिटिकल स्टडी के ऊपर मैं काम कर रही, इवन प्लेयर जो दोनों हाथ में बल्लेबाजी करते।
1: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं पखावज और बांस वाद्य के कलाकार श्री सुभाषिष सबसाची जी। सुभाषिष जी, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं, तो बताइए आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: ये गाना तो मुझे बहुत पता नहीं, इसका कौन फिल्म का नाम अभी याद नहीं,
1: आप बताएं।
0: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद पर किशोर कुमार जी का गाया हुआ ये गीत।

0: क्या बात है सुभाषिष जी, बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं को आपने सुनवाया। और श्रोताओं, इनसे मिले कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान हैं पखावज और बांस वाद्य के कलाकार श्री सुभाषिष सबसाची। सुभाषिष जी, पखावज एक वाद्य ऐसा है जो खास तौर पर ध्रुपद धमार के साथ ज्यादा बजाया जाता है ना? शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग होता है और कुछ फिल्मी गानों में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पखावज वादक जो होते हैं वो अपने मुंह से भी सारे बोल इसके निकालते हैं, तो हमारे श्रोताओं को कुछ बोल आप निकाल के बताएंगे।
1: जैसे देखिए, स्तुति परम जो होता है पखावज, तो पहले ही मैं जिक्र किया जो ये डिवाइन साज है। आप इसको आज की डेट में फिल्म में काफी गाने में भी पखावज के इस्तेमाल होता है, लेकिन ये तो टेंपल म्यूजिक में ज्यादा बजते हैं। कि पखावज की बात करें कि साउथ इंडियन मृदंगम की बात करें, सब एक ही अलग अलग वर्षन है। एक ही मेन मृदंग है, पहले मिट्टी में था, अभी तो वो लकड़ी में हुआ, जो भी है। तो उसमें स्तुति जो पड़ोन है देव देवताओं की, उसमें जैसे एक शिव जी का मैं बताता हूँ आपको, धकिट धकिट धधकिट दिन दिन दिन दिगत तकिट गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ तकिट ढिकिट ढिम ढिम ढिम डमड बजत धक धक धिकिट हर हर महादेव।

0: सरस्वती माता की ऊपर, सरस्वती सरस्वती सरस्वती माता तेरी चरण में आई विधाता, चरण शरण माता, चरण शरण माता, चरण शरण माता। इसके अलावा आजकल मैं और एक चीज लेके काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कुछ देखा जो गांव देहाती में अगर कोई जगह गायन वादन, कुछ लोग समझते नहीं है अगर हम कुछ बोल बोले, जैसे देखिए तो ये कंपोजिशन जब बजा रहे हो जो त्वरी के साथ, लोग उसका त्वरी में आनंद ले रहे हैं, और जो जानकार है जो क्लासिकल सीखते हैं उसका, बाकी लोगों का आम लोगों का इसमें मतलब नहीं है। तो इसके लिए ना मैं बोल कविता के ऊपर एक किताब की सोच है मेरा, उसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे देखिए इसका जो ड्राइंग मैंने किया तकधमकृतमकृतागदिग्ने, इसको एक्सप्लेन करके मैं जब बजाता हूँ तब जो श्रोता है बड़े आनंद लेते हैं। तो एक बच्चा भाग रहा है, देखिए तकधमकृतमकृतागदिग्ने, उसका माँ उसको खींच रहा है, धड़न्न देत्ता तकिट तका, कहा जा रहे हो इधर आओ, धड़न्न देत्ता तकिट कहा जा रहा। तो बच्चा बोलते हैं मेला पे वो जो बेलून है उसको कृधान्यतार्धा, मुझे वो बेलून चाहिए मम्मी। तो उसका माँ डांट के बोले कत धागड़ तकड़ का, मतलब एकदम उसको चाटा लगाने के लिए बोले कत धागड़ तकड़ का। तो बच्चा बोलता है, फिर बच्चा आगे खींच रहे हाथ, तो बोले क्रधित धिकिट गदा ने, दोनों एक दूसरे में लड़न थोड़ा है, क्रधित धिकिट गदा ने थूथू कृतागृधा थूथू कृतागृ, मतलब बोले खींच के क्रधित धिकिट गया, एकदम लगा दो तुमको अभी, क्रधित धिकिट गदा ने इधर। तो बच्चा बोलते थूथू कृतागृधा थूथू कृतागृधा थूथू, मम्मी मुझे माफ कर दे माफ कर दे माफ।
1: मतलब ये जो है ये पूरी स्टोरी जो है, हाँ। ये आप पखावज के बोलों से व्यक्त करते हैं,
0: जी,
1: बताते
0: जी,
1: हैं, तो ये बड़ी अद्भुत कला है आपकी,
0: जी,
1: और सुनने वालों को समझ में आ जाता है कि माँ कहाँ डांट रही है, कहाँ बुला रही है पखावज के बोलों से। सुभाषिष जी, आप चूंकि जो रिसर्च आप कर रहे हैं, पीएचडी के लिए जो काम आप कर रहे हैं, दोनों हाथों से, दोनों हाथों का इस्तेमाल साजों में करने के साथ साथ जीवन से जुड़ी हुई भी ये बात है,
0: जी,
1: तो इसमें जो आपने रिसर्च किया उसमें आपने क्या क्या पाया कि हमारी इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो दोनों हाथों से बहुत सारे काम करते हैं, उनके बारे में भी आपने जानकारी एकत्र की हो?
0: जी सर, मेरा तो रिसर्च अभी गोइंग ऑन चल ही रहा है, तो उसमें मैं जो जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जो जो मैंने जो जो इंटरव्यू लिए, उसमें मुझे सबसे पहले डॉक्टरों से मैं मिला, क्योंकि ये न्यूरोसाइंस से भी जुड़े हैं सब्जेक्ट, तो डॉक्टरों से जैसे ही लिए तो उन्होंने एक आश्चर्य बात बताई, जो लोग एम्बिडेक्स्टर होते हैं उसका ब्रेन का दोनों हिस्सा बराबर चलता है इक्वली, और दूसरी बात जो हमारा पूरा ब्रेन के ऊपर पूरा नियंत्रित हमारा शरीर का, तो मेन तो ब्रेन है आप जानते ही है, तो ये एम्बिडेक्स्टर लोगों का बराबर चलते। दूसरी बात, मैं जो जो आर्टिस्ट से मिला तो एक चीज देखा, जो एम्बिडेक्स्टर लोग होते हैं ये काम के लिए काफ़ी निपुण होता है, परफेक्शनिस्ट होता है। मुझे, मैं खुद एम्बिडेक्स्टर हूँ, तो वो लगता है ना, जैसे मैं कई बार टिप्पणी करके बोलता हूँ, जैसे एक लोग दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो हमारे में क्या हो जाता है, हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को लड़ाते हैं, ये हमारा खास बात है, मतलब ये इनर एक फाइट होता है जो कौन हाथ से जल्दी और अच्छा काम निपुणता के साथ कर सके।
1: सुभाषिष जी, आपका ये शोध जब पूरा हो जाएगा जिसमें आप पीएचडी कर रहे हैं,
0: जी,
1: तो उसके बाद फिर आपकी अगली मंजिल क्या है, आपका सपना क्या है?
0: मेरा एक सपना है, सपना तो बहुत है लेकिन उसको साकार देने की जो इच्छा है, एक देखिए मेरा एक बेम्बू स्कूल जिसमें अक्सर कलाकार को देखता हूँ रंग बिरंग की कलरिक कुर्ता पाजामा पहन के, कलाकार तो शौकीन होते ही है, शो करते अपना पेमेंट लेके जाते, कलाकार का लाइफ भी स्ट्रगल होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ जो अपने ही मतलब में, लेकिन मुझे लगता है सोसाइटी के लिए वो भी सुना रहा है, सेवा कर रहे संगीत का, चाहे अब जाकिर जी की बात बोले, किशन महाराज जी की बात बोले, जो भी बोले, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगा जो मुझे जो चिंतन है, जो समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं, जो आजकल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर मैं सोचा एक बैम्बू स्कूल, जहाँ पे बैम्बू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग से लेके उसको प्लेइंग तक सिखाया जाता है, और उसके ऊपर मैं थोड़ा अभी बहुत आभारी हूँ, मैं TIIT रायपुर का एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ बैम्बू स्कूल में बैम्बू क्राफ्ट की भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगा, और साथ ही साथ पाखोवाजर ये जो एम्बिडेक्सटरिटी है, तो एम्बिडेक्सटर एक स्कूल खुलना भी मेरा इच्छा है, जो दोनों हाथ का काम करते समर्थ है, दोनों हाथ के काम की, बहुत छुपे हिडन आर्टिस्ट है। आपको भी पता होगा, अक्सर जब घर में हम बाएं हाथ से कोई खाना खाते कोई तो मम्मी पापा टोकते, आज की डेट में टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एबिलिटी है, तो मैं जो जिसका एबिलिटी है उसको अगर दोनों हाथ से काम कराया जाए, तो इसके एम्बिडेक्सटरिटी का एक मैं इस मिशन लेके भी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा।
1: तो शुभाशीष जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके इस मिशन में आपको सफलता मिले, और पखावज वादन के माध्यम से आप अपने साज को विभिन्न महफिलों तक लेके जाएं, और इस ताल वाद्य के माध्यम से संगीत की यूं ही आप सेवा करते रहें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पखावज और बांस वाद्य से जुड़े कलाकार श्री शुभाशीष सबसांची से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे दीपक हटवार। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नवा बिहान। इसमें सुनिए एक पेड़ माँ के नाम 2026 के अंतर्गत रामनारायण यादवले बीरभान साहू की बातचीत।

थिन बीजा धरती में दबा दो, दाई के कोरा कस पेड़ बना दो, जैसन माता देथे दुलार, पेड़ घलो बरसाही प्यार। आज लगाबो काली फल खाबो, पीढ़ी दर पीढ़ी गुन गाबो, एक पेड़ माँ के नाम लगाबो, धरती ला फिर सरक बनाबो, धरती ला फिर सरक बनाबो। यही भाव संग जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। संगवारी हो, नवा बिहान के पिछले अंक मा एक पेड़ माँ के नाम 2026 विषय में ग्राम राका लोहरसी पलारी जिला बलौदा बाजार के पर्यावरणविद श्री रामनारायण यादव जी ले एक पेड़ माँ के नाम में बहुत सारे जानकारी प्राप्त करे रहे हैं और इकर ले मिले जानकारी के शेष भाग आज के अंक में सुनबो। रामनारायण यादव जी, आपके ये कार्य

0: मैं एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार यादव जी, कोई भी योजना जब शुरुआत में बंद थे तो बहुत प्रकार के कमियां रहते। ये योजना अभी अपन तीसर बच्छर में प्रवेश कर गए है, तो ये योजना एक पेड़ माँ के नाम 2026 एला विस्तार दे पर कैसन ढंग के काम करे जावत है।
1: लगभग अभी जो वर्तमान में योजना हवा है तो लगभग जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक आसपास के पर्यावरण ले लेके मैं जुड़े हुए हूँ, अब पर्याप्त है। अभी जो चलत है योजना है वो पर्याप्त है, उमा कोई प्रकार के कोई ऐसी कमी नहीं है। और लोगन मन में ये भावना भी जागृत होते कि जरूर हम लगाबो जी पेड़, महतारी के नाम में, अपन दाई के नाम में पेड़ लगाबो हमन, ऐसे करके ना सब जन की जो भावना है वह लगे है। और पौधा उपलब्ध कराए में वन विभाग पाछू नहीं है, बल्कि लगवैया मन जो है ओमन अभी से आवेदन शुरू कर दे देवर हमन करा। तो ऐसे वर्तमान योजना में तो लगभग कोई ऐसी समस्या तो मुला नजर नहीं आ।
0: और जैसे कि कोनो समाज सेवी संस्था या पर्यावरण प्रेमी संस्था मन ये में और भाग लेना चाहते तो ओकर प्रोत्साहन बर का व्यवस्था करेंगे?
1: जी जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। अगर कोई संस्था या कोई समूह अगर वो पेड़ लगाना चाहते लगवाना चाहते तो सबसे पहले तो हमारा निर्देश करथन कि देखा आप मन जो भी लगाना चाहता हो कौन सा वृक्ष लगाना चाहता हो अपन पसंद से बतावा, तो वो मन अपन प्रकार से बताते और हम ओला हर संभव उपलब्ध कराथन। जैसे एक बार कटहल ग्राम के नाम से गांव भर में कटहल के पेड़ लगवाएगी
0: जी जी,
1: ताकि वो गांव कटहल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। और संगे संग काहे जौन पसंद करो साजा कौहा सागौन नीम बहेरा औरा नीलगिरी और बेल केन्द्रू परसा सेमरा जो भी आप की हो सब पौधा हम आप लोग उपलब्ध कराबो। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि एक पर्याप्त जगह है तो वहाँ पीपल के पेड़ तो जरूर एक ठो लगावाओ, ताकि वो एक लंबा समय तक चिरंजीवी रथे और लंबा समय तक लगैया के नाम घला रोशन होते रहते। जैसे बहुत अकन रूप है हमारे गाँव में जिला हम कलार पीपर का पेपल बहुत जब वही संबोधन करते हैं, वो मेर जाबी जी कलार पीपर में, तो वो साहू पीपर में जाबी जी अलग अलग दिखाओ नाम कतका सुंदर, एक समूह के नाम आ जाते वहाँ। या कभी कभी वो वन देवी समूह वाले मन पेड़ लगाए तिथि पर जाबी, तो संस्था मन ला हर प्रकार से न सुविधा दिए जाते, यहाँ तक लगा के भी दिए जाते पौधा। अच्छा। हम लगा के भी दे थे।
0: अच्छा, अच्छा।
1: अगर अधिक मात्रा में लगावत है तो संस्था वाला बहुत कुछ जो है सुविधा विभाग की ओर से दिए जाते।
0: एक चीज है मोर मन में वो एक जिज्ञासा है कि ये योजना केवल सरकारी जमीन में ही क्रियान्वयन करे जाते कि यदि कोई व्यक्ति अपन प्राइवेट जमीन है उसमें ये योजना ला उपयोग करना चाहते या क्रियान्वयन करना चाहते तो सरकार का वो प्रोत्साहित करते
1: हैं? हाँ, बहुत अगर हम करा आवेदन आए लगभग 10,000 पौधा लगाए
0: जी,
1: हमार करा कम से कम 30-35 कृषक मन इच्छा जाहिर करे हैं, लिखित में दे हैं हमला मित्र योजना के अंतर्गत।
0: अच्छा।
1: हम लगा के देवो ओला पौधा ला, चाहे मेड़ में लगाए चाहे अपन भरनी भाठा में लगाए व्यक्तिगत।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और वो हम लगा के देवो, सुरक्षा करना उकर काम है। और यदि कहीं वो सुरक्षा एक साल के अंतर्गत में 100 पेड़ लगे और 100 पेड़ में कहूँ 80 पेड़ जीवित हो गए तो ओला प्रोत्साहन राशि भी दिए जाते प्रत्येक पौधा के पीछू में।
0: जैसे कि आप बताओ कि सरकार है अपन तरफ से पेड़ लगा के भी देते और लोग लगते थे कि आप एकर सुरक्षा करो, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे रहते जिन सुरक्षा करे पर तैयार है तो ओला कोनो प्रकार के आर्थिक लाभ प्रदान किए जाते हैं?
1: हाँ, बेचर अंतर्गत में का है कि देखा आजकल तो फोटो खींच खींच के भेजवा देते हैं कि हम ये पौधा लगाएं पीछे
0: जी जी,
1: लेकिन वो पौधा बांच जाए तभी वो फोटो खिंचाए थे सार्थक रही
0: जी जी।
1: सरकार के कहना है या ना कहना है, लेकिन अपन मन में हर एक व्यक्ति के जागृत होना चाहिए।
0: हाँ।
1: कि आज पेड़ पौधा के कमी हो गई है। मैं ये संदर्भ में छोटा कनऊ में आप लोग बताना चाहता हूँ कि आज हर व्यक्ति है जूता पन्ही लपहर के माटी के ऊपर नंगा पाँव नहीं चल पाते और एक कारण से बहुत अकन बीमारी मन घला आवत है। तो कम से कम वो पेड़ पौधा तीर में जाथन तो अपन ही जूता लहेर के वही तीर में हमारे चरण

0: मार गए थे तो नीचे को हम लार्थिन प्राप्त होते
1: बहुत बढ़िया।
0: कहाँ जहाँ पेड़ पौधा लगे ही तिहा। तो वही सवाल सर जी कि आज जन जागृति जो है ना वो हो गए हवे जागत है सब लगाए के पीछे में सबकी भावना है जो उन्हें लगे हवे। हाँ लेकिन लगा के वो बो दे गहूँ और चल दे कहूँ वाला में काम नहीं बने। एक बार हमन का करतन हमारे गांव में हमन लगाए तो घर में आप उदाहरण देना चाहता हूँ। मोर गांव में लीम के पेड़ लगी गांव के शुरुआत से लेके गांव के भीतरी जात ले और एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी दे दे देख भाई मतलब तो महतारी बरोबर समझ दे कहूँ पानी बिना कहूँ सुखावत है तो समझ दे कि महतारी के खिलाफ थे गलत है थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसी मतलब कुछ का विधान गांव गांव में बन जाए तो एमा कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे पेड़ बाँची ही।
1: यादव जी आप इतना बढ़िया विस्तार ले बताओ और आप पर्यावरण ला बहुत करीब ले देखत हो और आपके कार्य दिखत भी है। तो अभी जैसे ये योजना ला आरंभ हो 2 साल पूरा हो गए तीसरा साल में प्रवेश कर गए तो हमर छत्तीसगढ़ में ये योजना ला कैसन ढंग से प्रतिसाद मिलत है कुछ प्रतिफल दिखत है।
0: हाँ इधर बहुत सुंदर जो है उदाहरण आवत है कई गाँव से आवत है उदाहरण है जिला हम अखबार में पढ़थन मोबाइल के माध्यम से जानथन कि बहुत कुछ संस्था मन जो है जैसे मोर पलारी में एक जनहवय संस्था उमान पेड़ पौधा के पीछू में अतका संकल्पित है कि चंदन के पेड़ घला लान के देते और जन्मदिन हो तो वो पौधा लगाही ककरो जन्मदिन हो गए तो वह पौधा लगाही शादी ब्याह का डरिन तभो मतलब पौधा लगाही घर में ककरो इंतकाल हो गए खत्म हो गए ओकर नाम से एक पेड़ लगाया जाए। तो पेड़ लगाबो प्राण बचाबो ये संस्था पलारी महावे जोन मन ये काम ल करत है और ओकर प्रेरणा से न हर गांव में जन्मदिन में एक पेड़ लगाए के एक सिलसिला चालू हो गए है जो उन्हें बड़ा ही सुखद समाचार है।
1: यादव जी आप एक वरिष्ठ पर्यावरण प्रेमी हो पर्यावरण विद हो तो हमर जो उन्हें कार्यक्रम सुना थे संगवारी मन है श्रोता मन है इन लग का संदेश देना चाहो।
0: हाँ मैं संदेश तो बहुत अकन देना चाहते हैं लेकिन मोर एक कविता के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ।
1: स्वागत है
0: कि पेड़ पौधा ले सबके भलाई गा पेड़ पौधा ले सबके भलाई गा झन काटो खड़े रुख रही गा पेड़ पौधा ले सबके भलाई गा झन काटो खड़े रुख रही गा सुना दीदी बहनी और भाई गा पेड़ पौधा ले सबके भलाई गा।
1: वाह
0: क्या जन्म मरण तक संग निभाथी महिमा एकर ऋषि मुनि मन गाथी गीता वेद पुराण इतिहास पढ़ के देख लो जी एमा का है खास तो पवन चले मगन तन झपकी है आ जाएगा पेड़ पौधा ने सबके भलाईगा पेड़ पौधा ने सबके भलाईगा। लड़का पनमा झूलना बाढ़े सूते पलंग मा जी लड़का पनमा झूलना झूले बाढ़े तो सूते पलंग मा जी आई बुढ़ापा सांटी बन के चले तो संग मा जी उड़ गए हंसा तन लोह के ले गए बांस तन के संग में लकड़ी जरे धुआं उठे आकाश तो हर्रा बहरा आवरा जगमा बड़े बड़े दवाईगा पेड़ पौधा ने सबके भलाईगा पेड़ पौधा ने सबके भलाईगा। तो ज्ञान के भंडार जंगल महिमा है बरखास जी गौतम ध्रुव प्रहलाद पहुंची भेद प्रकाश जी तो तुलसी सुर कबीर वन में अलग जगाई और जमो भूमि तबले जंगल नाम धराई तपो भूमि तबले जंगल नाम धराई तो महिमा अतीत अनेक जंगल यादव लिखे न सिराईगा पेड़ पौधा ने सबके भलाईगा। मैं सबू झंडा यही मेरे संदेश हवे कि भाई पेड़ पौधा लगाए के पीछू में सब अपन अपन रुचि ला जगावाओ और बस यही मैं कही हूँ कि जीवन में जरूर संगी कर लो ये काम और एक पेड़ जरूर लगाहू माँ के नाम लगाहू माँ के नाम।
1: वाह यादव जी आप तो बहुत ही सार गर्भित ढंग ले बहुत ही अपन मतलब पर्यावरण में पूर्ण रूप से अपन आप समर्पित कर दे हो और आपके कविता के भाव सुन के आम श्रोता मन सोचे पर अवश्य शुरू कर दिन हो ही काबर कहे जाते कि ननपन के पलना ले लेके जीवन के अंतिम यात्रा तक रुख रही या लकड़ी हमर जीवन में काम आते और अतिक महत्वपूर्ण है ये लकड़ी तो इला हमन कैसे बचाए बर आगु नहीं आबो। हम लोग उम्मीद है कि आपके बात चीज सुन के हमार श्रोता मन हाँ जरूर प्रेरणा ली और आप अपन कीमती समय ले समय निकाल के आकाशवाणी में अपन बात रखे हो एकर बर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।
0: और मोरो तरफ से आकाशवाणी रायपुर ला बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो

मन मोला ये योग्य समझी और योग्य समझ के मोरकरा भेंट वार्ता करी। एक बार आपो मन लभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जमो सुनैया हमारे भाई बहनी मन लभी। जय जोहार।

अब आखिर में हम यही कहबो, माँ तेहा पालेस पोसेस, अब मोर बारी आगे वो, तोर नाम के पेड़ लगा के तोर दूध के कर्जा उतारत हूँ, तोर दूध के कर्जा उतारत हूँ। जय जोहार।

कार्यक्रम नवाभिहान में एक पेड़ माँ के नाम 2026 के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरणविद श्री रामनारायण यादवले बीरभान साहू की बातचीत। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का चित्रपट संगीत केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर। आज 10 जुलाई को उनकी जयंती है। तो आइए कार्यक्रम में पहले सुने मोहम्मद रफी की आवाज में एक नारी दो रूप इस फिल्म का गीत। गीतकार असद भोपाली और संगीतकार हैं गणेश।

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के स्वर में ठाकुर जर्नल सिंह फिल्म का गीत। नगमा निगार असद भोपाली, मौसिकार हैं गणेश।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है।
6: मुझे भी कुछ कहना

0: ना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, और आज का चित्रपट संगीत केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर। आइए श्रोताओं, अब सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म है पारस मणि।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

हम सब उस्ताद हैं। आइए अब सुने इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, बोल असद भोपाली के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए श्रोताओं, चित्रपट संगीत के अंत में सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में असद भोपाली की रचना। इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है रूप तेरा मस्ताना।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में 10:30 पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। फनकार हैं सुभाष चंद्र भट्ट। आइए श्रोताओं पहले सुने ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए, पहले सुनिए सुभाष चंद्र भट्ट की आवाज में ललित गोस्वामी की रचना

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार थे सुभाष चंद्र भट्ट। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में चलती हाईवा में आग लगने से 3 लोग झुलसे और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। कल रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिकोत्सव 2026 में उन्होंने दीदी के गोठ कॉफी टेबल बुक, विहान वाणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सफलता की कहानी साझा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और कहा कि कार्यक्रम के एक वर्ष में प्रसारित 12 एपिसोड से महिलाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार और स्वरोजगार की प्रेरक जानकारियां मिली हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर जिले के समोदा में 128 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने ग्राम रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण सहित कई विकास कार्यों की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले के बोड़ला क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी सड़क की राज्य स्तरीय जांच की गई। जांच के बाद निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर सहायक अभियंता और उप अभियंता को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का हिस्सा दोबारा बनाने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की पहली बैठक हुई। बैठक में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गिग वर्कर्स, चरवाहों और असंगठित कर्मकारों के मेधावी बच्चों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने पर भी सहमति बनी। श्रम मंत्री ने पंजीकृत श्रमिकों का EKYC और आधार आधारित पंजीयन कराने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। धमतरी के भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के मूल्यांकन में संस्थान को प्रदेश के शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 3रा स्थान मिला है। इस संस्थान का मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल संसाधन, अधोसंरचना, उद्योगों से समन्वय और प्लेसमेंट जैसे मानकों पर किया गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंबिकापुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर कल एक चलती हाईवा में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना ग्राम सोन तराई स्थित देवगढ़ के पास हुई। इस दौरान हाईवा में सवार वाहन चालक समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

0: तीनों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार यही स्थिति अगले 3 दिनों तक भी बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में चलती हाईवा में आग लगने से 3 लोग झुलसे। और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए संजय बंदोपाध्याय का सितार पर बजाया राग नट भैरव। आलाप और जोड़ के पश्चात 2 गतें, विलंबित गत 6 ताल में और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत की है राम स्वरूप रनोनिया ने। तो लीजिए सुनिए संजय बंदोपाध्याय का सितार पर बजाया राग नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संजय बंदोपाध्याय का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर संगत की थी राम स्वरूप रनोनिया ने। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है चालबाज़।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में देव कोहली की रचना, संगीत राम लक्ष्मण।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। शुक्रवार 10 जुलाई 2026 यानी आज प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा उद्यानिकी फसलों में नर्सरी प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बलदेव अग्रवाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बालोद। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार यानी आज 10 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सनम बेवफा फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार सावन कुमार और संगीतकार हैं महेश किशोर।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति, सुदेश भोसले और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म है हम।

और श्रोताओं, हम फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को है हिंदी समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
3: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रांतीय गीतों का कार्यक्रम अनुराग धारा। इसमें आज आप सुनेंगे भोजपुरी गीत। कलाकार हैं गणेश पंडित और साथी। आइए पहले सुने गणेश पंडित और साथियों के स्वर में ये भोजपुरी लोक भजन।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुराग धारा और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी गीत। कलाकार हैं गणेश पंडित और साथी।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तैं सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन

0: हिंदी माँ।
1: तब तो सुने ल पढ़ी
0: एक संग युवाणी।

0: कार्यक्रम अनुराग धारा में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी गीत। कलाकार थे गणेश पंडित और साथी। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है?
2: है
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना आराधना फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार थे SD बर्मन। आइए अब सुने किशोर कुमार को। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है RD बर्मन ने। फिल्म है अजनबी।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना, संगीत शंकर जयकिशन का है, फिल्म

0: किशोर कुमार की आवाज में आइए अब सुने नीरज का लिखा गीत, संगीत एसडी बर्मन का, फिल्म है शर्मीली।
1: ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी।

मीडियम वेव और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए दो रास्ते फिल्म का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11

0: बजकर 55 मिनट होने को है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सीबीआई ने महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र दाखिल किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इनमें 6 आरोपियों को नामजद किया गया है। जांच एजेंसी ने मामले के मुख्य आरोपियों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ भी अतिरिक्त सबूत अदालत में पेश किए हैं। विदेश में छिपे 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने की राज्य सरकार की नीति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा देने से इनकार करने का आदेश निरस्त करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिन के भीतर 4,00,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए। ये मामला राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र का है। कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। शातिर ठगों के गिरोह ने फरसगांव, केशकाल, बड़े डोंगर, धनोरा, विश्रामपुरी सहित कई क्षेत्रों के शिक्षकों को अपने झांसे में लिया था। मामले में थाना फरसगांव और केशकाल में 4 अपराध दर्ज हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में पता चला कि ठग शिक्षकों को पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट से लौह स्क्रैप चोरी करने के मामले में पुलिस ने प्लांट के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एसएमएस थ्रिल के जीएम और इंजीनियरिंग एसोसिएट शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के द्वारा पिछले 4-5 माह से योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंबिकापुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर कल एक चलती हाईवा में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना ग्राम सोनतराय स्थित देवगढ़ के पास हुई। इस दौरान हाईवा में सवार वाहन चालक समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन तीनों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दुर्ग जिले में स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नया भवन परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की 15 कंपनियों में 1,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इस रोजगार मेले में 10वीं पास भी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई को 22 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र दाखिल किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
3: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
3: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
3: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
3: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूं, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
2: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
3: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
2: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्यपुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
3: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं।

0: महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई।
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार, गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे भागो, अरे भूल जाओगे, अरे भागो, अरे सिपाही आ गए, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धन नंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं

0: कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर
4: बड़े

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
4: ऐसा ही होगा,
5: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
6: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
6: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं सकते हैं।
0: मैसिडोनिया चलो, वापस चलो सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य।
5: धन्य हो
4: आचार्य।
5: धन्य हो।
6: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुर सिंगार।

नेहा और वन्या सिंगरौल, सोंगा मगरलोडले, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन, देवरी भाटापाराले, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री, सिंगारपुर पैलीमेटाले, चिंताराम ध्रुवे, कामेन चंद्रध्वज और सानू ध्रुवे, तंदाग्राम सुखरीकलाले, अमित जंघेल, शकुन आरुषी, ओशिखा आदित्य, अंजलि जंघेल, आवरा डबरीले, श्यामलाल साहू, मोंगरा केशरी, पिंकी प्रीति साहू, टेकापार कलाले, समलिया राम वर्मा, फूलमत वर्मा, बोगाटोला मोहला मानपुरले, मालिक राम सिन्हा, इंदू तारामती चांदनी, मुनिंद सविता देवी सिन्हा, नेवई उत्तैले, विक्की देवांगन, उर्वशी देवांगन, जतिन जयंत कुनिका और दीपशिका देवांगन, देहान बांधा बाजार राजनांदगांवले, हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानी सरस्वती, प्यारी राम और परमानंद साहू। आप जम्मू संगवारी मन के पसंद में आवाज सुने जाए केदार यादव और साधना यादव के गाए ए गीत।

केदार यादव और साधना यादव के गाए यही गीत सन सिरात है आज के सुरसिंगार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम पर गीत चोरे रिहिन बीर भान साहू आप पिता देव जम्मो संगवारी मल्ला तारकेश्वरी के राम राम।

0: छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुरसिंगार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक बजने को है, आइए समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्स

0: से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिला के भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में इस नीलेश मिश्रा का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत MM क्रीम का था, फिल्म थी जिस्म। आइए अब आपको सुनवाएं फिल्म गजनी का गीत। बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, संगीत AR रहमान का है।

लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत शांतनु मोइत्रा का है, फिल्म का नाम है परिणीता।

लीजिए अब सुनिए रंग दे बसंती। इस फिल्म का गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाजों में, प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, संगीत यार रहमान का है।

मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज़ों में प्रसून जोशी का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत यार रहमान का था। फिल्म रंग दे बसंती के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर आप सुनेंगे करंट अफेयर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सत्य रंजन गंगेले का तबला वादन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा संजय बंदोपाध्याय का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ होगा शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा हिंदी में। इसमें आजकल में बातचीत का विषय होगा सीखने की ललक सदा रखें बरकरार। क्रम खेल चौपाल के साथ ही आप सुनेंगे क्रम ज्ञान सरिता जो केंद्रित होगा फुटबॉल पर। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनिएगा शाम 6:30 पर। चौपाल में शाम 7:21 पर आज के बाद में चर्चा होगी हरी पत्तेदार सब्जी की खेती अपनावन आमदनी और पोषण दोनों पावन के बारे में। और क्रम हेलो चौपाल में उद्यानिकी फसलों में नर्सरी प्रबंधन इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बलदेव अग्रवाल विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बालोद। हेलो चौपाल का संचालन भूषण निषाद का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे सुभाष चंद्र भट्ट। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00 2:30 पर शाम 7:00 रात 8:00 और रात 9:15 पर भी। श्रोताओं हम आपको एक बार फिर बता दें आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और कार्यक्रम करंट अफेयर्स सुनिएगा रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे हिंदी में। इसमें आजकल में बातचीत का विषय होगा सीखने की ललक सदा रखें बरकरार। क्रम खेल चौपाल के साथ ही सुनिएगा क्रम ज्ञान सरिता जो केंद्रित होगा फुटबॉल पर। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा होगी हरी पत्तेदार सब्जी की खेती अपनावन आमदनी और पोषण दोनों पावन के बारे में। और कम हेलो चौपाल में उद्यानिकी फसलों में नर्सरी प्रबंधन इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बलदेव अग्रवाल उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बालोद। संचालन भूषण निषाद का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे सुभाष चंद्र भट्ट। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें आप सुनेंगे रात 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए सत्य रंजन गंगेले का तबला वादन। आप सुनेंगे तबले पर 3 ताल में पेशकार, कायदा, रेला, परन, टुकड़े आदि। हारमोनियम पर संगति की है विजय कुमार कुर्ब ने। तो आइए सुनिए सत्य रंजन गंगेले का तबला वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सत्य रंजन गंगेले का तबला वादन अभी आप सुन रहे थे। हारमोनियम पर संगति की थी विजय कुमार कुर्म ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। 2 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म अंधाधुन से। गीत लिखा है जयदीप साहनी ने, स्वर और संगीत अमित त्रिवेदी का है।

अंधाधुन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था जयदीप साहनी ने, स्वर और संगीत अमित त्रिवेदी का था। आइए अब सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में जमील अहमद का लिखा गीत, संगीत बिलाल सईद का है, फिल्म का नाम है बाजार।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत में आइए अब सुने विशाल मिश्रा और असीस कौर की आवाजों में फिल्म नोटबुक का ये गीत, जिसे लिखा है विशाल मिश्रा ने, संगीत अक्षय त्रिपाठी का है।

0: नोटबुक फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेले।

0: 자.
1: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
3: And we've always had a good close relationship with India in playing hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
2: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यार ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyar.gov.in

0: प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a richly diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है ये पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से

0: जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म ब्लैकमेल का गीत, जिसे लिखा था समीर ने, संगीत हिमेश रेशमिया का था।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना, संगीत नदीम श्रवण का था, फिल्म थी परदेस।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो, फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ में नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर ते बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लग हलो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए अब सुनिए फिल्म बर्दाश्त का गीत। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजों में इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

और स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, आज साल 2026 में हमारे पास बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और दिल की बात कहने के लिए इमोजीज हैं। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है, लेकिन ज़रा सोचिए, आज से 60 से 70 साल पहले यानी 1950 और 60 के दशक में जब ये सब नहीं था, तब लोग प्यार कैसे करती थी, उनके दिल की बातें कहाँ होती थी। आज मैटनी मेलोडीज़ के इस बेहद खास शो में मैं आपको लेकर चलूंगी उन 6 खास ठिकानों पर जो 50 और 60 के दशक के रोमांच की जान हुआ करती थी। तो चलिए, यादों के इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ और चलते हैं हमारे पहले ठिकाने पर। आज का हमारा

0: पहला ठिकाना है घर की खिड़की। आज जब किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रोफाइल देखते हैं, लेकिन 50 और 60 के दशक में ना प्रोफाइल थी, ना स्टेटस, ना ऑनलाइन ऑफलाइन का
1: चक्सन ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेता के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। इस महीने की पहली तारीख को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी कर मामले पर परामर्श पूरा होने तक इसे लागू न करने को कहा था। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और रविवार को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour, where he received a warm ceremonial welcome from New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The two leaders shared a warm embrace as Prime Minister Luxon personally received Mr. Modi on the red carpet at Auckland Airport. Prime Minister Modi was accorded a ceremonial reception on the tarmac with representatives of the Indian and New Zealand armed forces in attendance. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic, and security ties between the two democratic giants. The economic momentum ignited early with the India-Australia CEOs Forum, where business leaders celebrated a 55% surge in two-way trade driven by the 2022 ECTA agreement. To unlock further potential, Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese fast-tracked negotiations for the Comprehensive Economic Cooperation Agreement. The central government has amended drugs rules 1945 to strengthen regulation of high alcohol-containing drug formulations. The Ministry of Health and Family Welfare has removed the existing exemption from licensing requirements for formulations containing ethyl alcohol. According to the notification issued by the Ministry of Health and Family Welfare, all formulations containing more than 12% volume per volume ethyl alcohol in quantities exceeding 30 milliliter will no longer be covered under the exemption provided to them under Schedule K. Such products will be required to obtain the requisite licenses under the Drugs and Cosmetics Act 1940. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said the government is planning to introduce E85 fuel, which would be about 20 rupees cheaper per litre than standard E20 petrol. He said E85 would be restricted to vehicles specifically designed to use the fuel. In an interview with a private news channel, the petroleum minister said the proposed move aims to provide financial relief to consumers while advancing the government's ethanol blending programme. India has strongly condemned conflict-related sexual violence, CRSV, describing it as a tool of war, terrorism, torture and political repression used to subjugate communities, suppress dissent and inflict human suffering. Speaking at the UN Security Council open debate on conflict-related sexual violence, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador P. Harish, said such violence continues amid a prevailing culture of impunity and India strongly condemns such heinous acts. Referring to the UN Secretary General's report, he said the sharp increase in verified cases in 2025 reinforces the urgent need for collective action.
3: Sexual violence continues to be used as a means of war, of terrorism, torture and political repression to subjugate communities, suppress dissent and inflict human suffering. This continues amid a thriving culture of impunity. We strongly condemn such heinous acts. Conflict-related sexual violence devastates women individually and creates irreversible scars on the spirit of the human ecosystems around them. Beyond physical harm, the psychological trauma and social isolation that follows demand carefully designed interventions for the rehabilitation and reintegration of survivors.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has arrived in Oman after concluding his visit to Kuwait. On his arrival, he was received by the Director General at the Foreign Ministry of Oman, Sheikh Ahmed Al Maskari. Dr. Jaishankar is currently on an 11-day tour covering Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, New York and Brussels. After completing his visit to Oman, he will travel to New York to launch India's official campaign for the UN Security Council tenure 2028-29. He will then visit Brussels on the 14th and 15th of July to attend the third India-European Union Trade and Technology Council meeting and hold interactions with his European Union and Belgian counterparts. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at Lord's. And with that, we end this news bulletin.

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा गीतों के कार्यक्रम का, जिसका नाम है मन भावन। जी हाँ, यानी कि आप वो गीत सुनते हैं जो भाते हैं आपके मन को। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने फ़ोन के साथ, अपने ईमेल के साथ, ताकि आप अपनी पसंद के गीत की फरमाइश हम तक पहुंचा सकें। आपको पता है कैसे आपको अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है? FM गोल्ड AIR दिल्ली @gmail.com पर।

आप ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश अपने नाम के साथ, शहर के नाम के साथ हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। मैं पहुंचाऊंगी आपके पसंदीदा गीत आप तक। स्वागत करती हूं मैं रुचिका आप सभी का। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपके हसीन।
1: जी हाँ, ये खूबसूरत गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। यदि आपकी कोई पसंद है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो ईमेल के ज़रिए अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं fmgoldair@gmail.com। और देखिए कितनी सारी फरमाइशें, कितने सारे ईमेल्स जो हैं वो हम तक पहुँच रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र, उमेरखड़ महाराष्ट्र से हम तक संदेश पहुंचा है। अभिजीत राही का, इनके साथ हैं श्रीमती सरिता गुहाणकर और साथ साथ सिद्धांत, प्रणीता, लाडला, टुकटुक, एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, इनका पूरा परिवार जो है वो हमें सुन रहा है। और एक आशा भोसले जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और साथ साथ आपको बता दें, बहुत सारे संदेश हम तक पहुँचे हैं। फिल्म दो बदन का भी एक रिक्वेस्ट हम तक पहुँचा है, महाराष्ट्र से ही इनका संदेश हम तक पहुंचा। विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर का संदेश हम तक पहुंचा। और देखिए और किसका संदेश हम तक पहुंचा है, भाई हरजिंदर सिंह भाटिया जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया भी हैं। इन्होंने भी जमशेदपुर से इनका संदेश पहुंचा है हम तक, ये भी एक गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं। और देखिए एक बार फिर से विजय जी का संदेश हम तक पहुँचा है। और ताज मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहाँ, आज़ाद नगर, हरिद्वार से इनका संदेश हम तक पहुंचा। और कहते हैं कि हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ आप शामिल कर लीजिए। तो चलिए, हमने आपकी फरमाइश और आपका संदेश दोनों ही शामिल कर लिए हैं। फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में ये सुपरहिट गीत।

जी हाँ, बहुत सारे संदेश, बहुत सारी फरमाइशें जो हैं वो आपकी हम तक पहुंच रही हैं। और देखिए, हम तक संदेश पहुंचा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का चंडीगढ़ सिटी से, और फरमाइश भी इन्होंने की है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में एक खूबसूरत गीत की। और लिखते हैं कि प्रोग्राम में रुचिका जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है और FM गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें। भाई क्या बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप FM गोल्ड के लिए इतनी अच्छी और प्यारी बातें आप लिखते हैं, और FM गोल्ड का जो साथ है वो आप हमेशा निभाते हैं। इनके अलावा देखिए और भी बहुत सारे संदेश हैं। मोहम्मद सईद अबासी का संदेश हम तक पहुंचा है, इनके साथ है निकट परवीन अबासी और इनका पूरा परिवार, कहां से, बुलंद शहर से इनका संदेश हम तक पहुंचा। और संजय ढिंगिया का संदेश हम तक पहुंचा है, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया इनके साथ हैं, उत्तर प्रदेश बागपत से इनका संदेश हम तक पहुंचा। और रोहित बेलदार हमारे साथ हैं, इनके साथ फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, आसमा वली बेलदार और डब्लू वली बेलदार, कहाँ से, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से इनका संदेश हम तक पहुँचा।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन आपके साथ है। और यदि आपकी भी कोई फरमाइश है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं FM गोल्ड AIR Delhi @gmail.com पर।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप बने हुए हैं और आपका पसंद

सीधा कार्यक्रम मन भावन जारी है, जिसमें मैं आप तक पहुंचा रही हूं आपकी पसंद के गीत। यदि आपकी भी कोई पसंद है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और देखिए आपके कितने सारे संदेश जो हैं, कितने सारे ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं। देखिए, प्यार भरा नमस्कार आदरणीय प्रचारक महोदया जी, सुनना चाहते हैं कौन है भई ये, सबसे पहले आपको ये बताएं। शेगांव बुलडाना महाराष्ट्र से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। संतोष एस काले, तेजस एस काले का संदेश है ये। फिल्म आया सावन झूम के फिल्म का मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनना चाहते हैं ये एक गीत। और देखिए, उत्तर प्रदेश से हम तक एक और संदेश पहुंचा है। किसका पहुंचा है भाई? फरुखाबाद से असलम मंसूरी और फहीम मंसूरी का संदेश पहुंचा। लिखते हैं कि नमस्कार जी, मन भावन प्रोग्राम मैं भी सुन रहा हूं। जी, आप सुन रहे हैं, हमें पता है, और हमने आपका संदेश शामिल भी कर लिया। तुलसी मस्कीन का संदेश हम तक पहुंचा। इनके साथ हैं वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना, कहां से? बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इनका संदेश पहुंचा। और लिखती हैं कि भाई होस्ट रुचिका जी, यही साथी, यही मीत दर्द कांटे गीत संगीत, मेरे मेल पर भी गौर फरमाइए, अभी तक आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। देखिए भाई, हमने रिप्लाई कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई शिकायत है तो आपके पसंद का जो गीत है वो आप तक पहुंचाकर हम उस शिकायत को दूर करेंगे। संदीप मक्कड़ का संदेश हम तक पहुंचा है। कहां से ये संदेश हम तक पहुंचा है? जालंधर से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और इनके साथ हैं भरत और कमला भी। और भी बहुत सारे संदेश देखिए। लता मंगेशकर के आवाज़ में सुनना चाहती हैं गीत। पंजाब से इनका संदेश पहुंचा है। भवानीगढ़ संगरूर से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब इतने दूर दूर से आपके संदेश, आपकी फरमाइशें जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं। गुजरात से एक संदेश हम तक पहुँचा है। अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश कुमार का, इनकी भी एक फरमाइश है, फिल्म सत्य पे सत्ता और गीत है मौसम मस्ताना। देखिए ये जो गीत है ना, इसकी फरमाइश हर मन भावन कार्यक्रम में हम तक पहुंचती है, और लगभग ये इस मौसम में ये गीत हमें सुनने को मिल ही जाता है ना। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुँचा है। मोहम्मद सईद अब्बासी का एक बार फिर से हम तक संदेश पहुँचा। और कौन है हमारे साथ? कोल्हापुर से हैं संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार का संदेश हम तक पहुंचा। और एक गीत भी सुनना चाहते हैं ये, फिल्म फूल और कांटे से। और भी आपके बहुत सारे संदेश हैं। देखिए, संदेश हम तक पहुंचा है हर्षित, हीना हेमलता और खुशी गोस्वामी का, राजस्थान गंगानगर से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया संदेश पहुंचाने के लिए, और मैं आप तक पहुंचा रही हूं आपकी पसंद के गीत। एक ईमेल आईडी एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं। बहुत सारे संदेश आपके हम तक पहुंच रहे हैं। संदेशों के साथ साथ बहुत सारी तारीफें भी हैं और शिकायतें भी हैं। बेंगलोर से संदेश हम तक पहुंचा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का। लिखते हैं, FM गोल्ड के प्यार का मारा हूँ मैं, सिकंदर हूँ पर हारा हूँ मैं, न जाने क्यों जलने लगे वो मुझसे, जब से उनकी आँखों का तारा हूं मैं। भाई इतनी खूबसूरत बात आपने लिखी, FM गोल्ड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ एक शिकायत भी है कि आप जो हैं हमारा संदेश शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जो 15 से 20 मेल करते हैं उनके ही आप संदेश शामिल करते हैं। देखिए यही जो है समस्या होती है, जब आप 15-20 मेल हमें करते हैं, इतनी लंबी लिस्ट हम तक पहुंचती है कि कंफ्यूजन होती है कि किसका मेल हम शामिल करें और किसका नहीं। इसीलिए हमारी गुजारिश हमेशा यही होती है आप सभी से, श्रोताओं से, कि एक या दो मेल्स आप हम तक पहुँचाएँ, ताकि जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनके सभी मेल्स, उनकी सभी फरमाइशें हम अपने प्रोग्राम में मन भावन में शामिल कर सकें। और फिलहाल स्वरूप आनंद सरजल का संदेश हम तक पहुंचा है और एक फरमाइश भी इन्होंने की है। कहां से इनका संदेश पहुंचा है भाई? सीजी इन्होंने लिखा है। लिखते हैं कि पूरा जो परिवार है उनका वो FM गोल्ड सुन रहा है। और साथ साथ सनावत से शेख मुसा मोहसिन का संदेश हम तक पहुंचा और लिखते हैं कि आप खैरियत से हैं, दुआओं में हमें याद रखना। और एक फरमाइश भी इन्होंने हम तक पहुंचाई। और किनका संदेश हम तक पहुंचा है? और भी बहुत सारे संदेश हैं। देखिए, आलिया अंसारी, लुबना अंसारी, अनवर मोहम्मद कैफ, रियाज आफ्ताब अंसारी, इन सभी का संदेश हम तक पहुंचा है उत्तर प्रदेश से। और सारिका सुतार चेतन और संभा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोल्हापुर से। इनके अलावा शकुंतला यादव गरिमा और उग्रसेन यादव का संदेश हम तक पहुंचा है नई दिल्ली से ही। आफ्ताब अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके भी संदेश। देखिए कितने सारे संदेश हम तक पहुंचते हैं ना, एक ही ईमेल जो है वो बार बार आप हम तक पहुंचाते हैं, इसीलिए बाकी के संदेश हम शामिल नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे संदेश पहुंचे हैं। और देखिए किनका संदेश है, लखनपाल रंधावा और सुरिंदर कौर रंधावा का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुंचा है। उत्तम कुमार का संदेश पहुंचा, इनके साथ हैं श्वेता किशु अरसव और सत्यम आनंद झारखंड से। और पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश हम तक पहुंचा। और भी बहुत सारे संदेश हैं। देखिए एक और संदेश है, किनका संदेश है, सचिन खोरवाल हैं और जयराम हैं दिल्ली, उत्तम नगर दिल्ली से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने संदेश पहुंचाने के लिए, फरमाइशें पहुंचाने के लिए। और साथ साथ हमें उम्मीद है कि जो भी आपकी शिकायतें होंगी वो हमने दूर करने की कोशिश की होगी।

संदेश हम तक पहुंचा है एटा से। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद का। और साथ साथ किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से संदेश पहुंचा है जुबेल अली खान और सबीहा अंजुमन खान का। लिखते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी यदि आप हमारा नाम भी शामिल करें। तो चलिए, आपकी शिकायत दूर हुई। और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक का संदेश हम तक पहुंचा है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुंचा है। और हमारे साथ बने हुए हैं दिग्दर्शन कौर मेरठ से, इनका संदेश पहुंचा है। इनके साथ कविता गौर भी जुड़ी हुई हैं। तो भैया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने संदेश पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का मनभावन पसंद आया होगा। फिलहाल मनभावन में इतना ही। वक्त हो चला है समाचारों का। सुनते रहिए FM गोल्ड 101.3।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज शिमला के भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान में वंदे मातरम एक यात्रा प्रदर्शनी के उद्घाटन और सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में उभरा है। इसमें लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्याएं बनाई गई हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमों को और कठोर बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एथिल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए

अनुसूची के अंतर्गत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक एथिल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कल जवाब प्राप्त हुआ था। 1 जुलाई को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी कर मामले में परामर्श पूरा होने तक इसे लागू न करने को कहा था। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर सुशासन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार और रविवार को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। ये शिविर सवेरे 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 28 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। नॉर्वे का सामना इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में और सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार वर्षा की आशंका है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ रुचिका आपके साथ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

0: Eligibility qualifications, experience and enumeration is available on the website. And the last date for submitting online applications is 12th July 2026. For details, kindly look up the website at www.birac.nic.in. Indian Institute of Management, Visakhapatnam, has invited online applications for the recruitment of contract staff across various departments. Vacancies include academic programs, 2 posts, executive education programs, 2 posts, career development services and alumni relations, 2, one based in Mumbai remotely and 1 in Visakhapatnam on-site, and admissions officer, 1 post. Interested candidates can check the eligibility criteria, job descriptions and apply online through the Institute's career portal at www.iimv.ac.in/careers. The last date for submission of online applications is 18th July 2026. And I repeat the website, it is www.iimv.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी की 2 और अधीक्षक ग्रेड 1 लेखा का 1 पद उपलब्ध है। पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन और अन्य विवरणों के लिए देखिए वेबसाइट rgipt.ac.in/en/page/recruitment। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 जुलाई 2026। CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। टेक्नीशियन इस ट्रेड से होने चाहिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फाउंड्रीमैन, मैकेनिक मोटर वाहन डीजल और रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cmeri.res.in। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक निदेशक शैक्षिक, शैक्षिक अधिकारी हिंदी, पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट www.nios.ac.in। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट अग्नि के 2 सामान्य पद हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। विवरण के लिए देखिए CISF की वेबसाइट www.cisf.gov.in। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में उपनिदेशक लेखा का 1 पद उपलब्ध है। इसके लिए देखिए वेबसाइट www.nios.ac.in। वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अन्य जानकारियों के लिए यदि आप चाहें तो देख सकते हैं 4 से 10 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उप सचिव रिक्ति 1, उप परीक्षा नियंत्रक रिक्ति 1, अनुभाग अधिकारी रिक्तियां 6 और सहायक लाइब्रेरियन 1 रिक्ति। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट ncismindia.org/advertisements। कृषि विज्ञान केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विस्तार 1 पद और सहायक 1 पद। योग्यता और अनुभव के विवरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र

0: की वेबसाइट देखिए, पता है parbhani.kvk8.in। सैनिक स्कूल सतारा आमंत्रित कर रहा है नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सिस्टर के पद के लिए आवेदन। आवश्यक योग्यता, आवेदन फॉर्म और नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sainiksatara.org। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उपनिदेशक राजभाषा का एक पद रिक्त है, इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.meity.gov.in। ये जानकारियां DOPNT की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.dopt.gov.in। राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण यंग प्रोफेशनल्स के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवश्यकता इस प्रकार है, यंग प्रोफेशनल 4 पद, CACMA यंग प्रोफेशनल 4 पद कानूनी और यंग प्रोफेशनल IT 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण की वेबसाइट NFRA.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: Hello, Namaskar, and a very good afternoon, Sir Firozi. So we are here with a fresh new episode of Parikrama today.
1: Ji.
0: Yes, the song says that after a long spell of hot days and high temperature, monsoon finally sweeps all of India. This was the longest the rainy season has taken to cover the entire country since 2021. And Delhi and its neighboring districts received almost continuous rain in last 2 days. And we did face a lot of traffic jams and disruptions on roads. But yes, the city is breathing good air after nearly 3 years. Thanks to the widespread monsoon showers, the city's air quality index recently dropped to an impressive 59. It is really very surprising for Delhi.
1: बिल्कुल और अनुजा अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि बारिश बड़े दिनों बाद आई है, मॉनसून अब बढ़ चला है पूरे देश में, तो बारिश का तो मजा लेना जरूरी है ही, लेकिन अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना है. कुछ लोगों को इन्फेक्शन कैच हो जाता है. इसके अलावा एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी अपने श्रोताओं से भी कि बाहर निकलने से पहले या आप कहीं भी जा रहे तो पर मौसम विभाग की एडवाइजरी जरूर देख लें. कई जगहों पर
0: कैरी एन अम्ब्रेला ऑलवेज विद यू.
1: यस.
0: And I would still say, let more rain come to the cities as it is the monsoon season. Pick up your evening cup of tea or coffee. Tune in to Parikrama on Akashvani and enjoy your afternoon. And if the rain continues in the evening as well, you still have a lot to do. Catch up with the sports events going on these days, with Wimbledon and FIFA World Cup creating all the buzz.
1: जी बिल्कुल. पर शुरुआत करेंगे अपने परिक्रमा कार्यक्रम से.
0: Right. So just be with us for the next half an hour. Let's begin with all the updates in the afternoon magazine today with the news headlines.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं. वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे.
0: सेंटर अमेंड्स ड्रग्स रूल्स टू रेगुलेट हाई अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग फॉर्मुलेशंस.
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की. इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया.
0: IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today.
1: फीफा विश्व कप के दूसरे

0: क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से।
1: एंड इन विमेंस क्रिकेट, इंडिया टू टेक ऑन इंग्लैंड इन हिस्टोरिक वन ऑफ टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इन लंदन दिस इवनिंग। And of course, as always, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, first we will talk about National Fish Farmers Day. Today we are celebrating National Fish Farmers Day, observed every year on July the 10th. It's a day to recognize the invaluable contributions of our fish farmers, fishers, aquapreneurs and researchers who help strengthen India's food security and rural economy.
0: बिल्कुल अनुजा, वैसे तो ऐसे लोग जो हमारी प्लेट तक खाना पहुंचा रहे हैं, पौष्टिक खाना पहुंचा रहे हैं, इन सभी की हर रोज कद्र की जानी चाहिए। लेकिन जो आज का दिन है, खास तौर पर ये दिन मछली पालन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करने और इस बात पर विचार करने का भी दिन है अनुजा, कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने कीमती जल संसाधनों का टिकाऊ तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं।
1: बट देन Why is 10th of July so significant?
0: बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है अनुजा, कि ये दिन तो किसी भी दिन मनाया जा सकता था, तो फिर आज का ही दिन क्यों? तो इसलिए क्योंकि 1957 में इसी दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के एच अली कुन्हो ने ओडिशा के अंगुल में भारत में पहली बार काप मछली का इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में सफलता हासिल की। अपने श्रोताओं को बताते चले कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी प्रेरित प्रजनन मछली पालन की एक उन्नत और वैज्ञानिक तकनीक है। इसमें मछलियों को कृत्रिम रूप से हार्मोन इंजेक्शन देकर अनुकूल परिस्थितियों का एहसास कराया जाता है, और जब इस तरह के एनवायरनमेंट में अनुजा पहुंचती हैं मछलियां, तो वो बाद में फिर पानी में अंडे देती हैं।
1: राइट सर फिरोजी, इन फैक्ट नॉट टू फॉरगेट दैट जुलाई 10th इज आल्सो द फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन 2006 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनहांस फिश प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री।
0: बिल्कुल अनुजा, और आज से 20 साल पहले जब इस बोर्ड का गठन हुआ था और आज जब हम देखते हैं, तो भारत के मछली पालन सेक्टर ने बहुत तरक्की कर ली है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है और दुनिया भर में होने वाली मछली उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है। तो मेरे हिसाब से ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी तरक्की है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर पर मछली पालन के क्षेत्र में। ये सेक्टर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका का जरिया है, और खास तौर पर अनुजा तटीय और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए।
1: यस, इन फैक्ट फिश प्रोडक्शन हैज मोर देन डबल्ड फ्रॉम 95.79 लाख टन इन 2013-14 टू अराउंड 197.75 लाख टन इन 2024-25। दैट्स एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट, इजंट इट सर फिरोजी?
0: बिल्कुल, और जब हम इन सारी उपलब्धियों की बात अनुजा करते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह सरकार के जो प्रयास हैं, इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं समर्थन हमारे मछली पालकों को मिल रहा है और इस तरह से हम लोग इस क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। बहुत सारी पहले हैं, उनमें से कुछ का जिक्र हम अपने श्रोताओं के लिए यहां कर देते हैं। सरकार की पहले जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास कोष, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस सेक्टर को आधुनिक बनाने, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अनुजा मछली पालकों के लिए वित्त सहायता को मजबूत करने में बहुत मदद कर रही हैं।
1: यस फिरोजी, एज वी सेलिब्रेट नेशनल फिश फार्मर्स डे टुडे, लेट्स एक्नॉलेज द डेडिकेशन ऑफ एवरी फिश फार्मर, फिशर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड एवरीवन वर्किंग टू मेक इंडियाज फिशरीज सेक्टर स्ट्रॉन्गर, मोर सस्टेनेबल एंड ऑफ कोर्स मोर रेजिलिएंट।
0: बिल्कुल अनुजा, हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं हमारे मछली पालकों का योगदान उत्पादन और आर्थिक विकास के अलावा, ये जलीय संसाधनों के संरक्षण, पौष्टिक प्रोटीन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने और लाखों परिवारों की टिकाऊ आजीविका को सहारा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
1: एंड वी कैन ऑल्सो से दैट नेशनल फिश फार्मर्स डे इज देयरफॉर नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट इनकरेजिंग इनोवेशन, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड वर्किंग टूगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर।
0: बिल्कुल अनुजा, और सस्टेनेबल फ्यूचर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके साथ साथ हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है किसी भी संसाधन के टिकाऊ प्रबंधन की। तो एक उपभोक्ता के तौर पर हम भी अपने स्थानीय मछली पालकों के प्रयासों का समर्थन करके टिकाऊ मछली पालन को बढ़ावा देकर और अपनी नदियों, झीलों, जलाशयों और

0: तटीय इकोसिस्टम को बचाने के महत्व को समझकर अपना योगदान दे सकते हैं।
1: Yes, so on this National Fish Farmers Day, we extend our heartfelt appreciation to every fish farmer, fisher, researcher, and every individual working tirelessly to strengthen India's fisheries sector. And now moving on to the other topic which we'll be discussing today is Global Energy Independence Day. Today, 10th of July, we also celebrate Global Energy Independence Day, a day that encourages all of us to think about a cleaner, greener and more sustainable energy future.
0: बिल्कुल अनुजा, आज का जो ये दिन है, ये दिन दुनिया भर के लोगों को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, सौर, पवन, जल और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए बहुत हद तक प्रेरित कर रहा है।
1: एंड इंटरेस्टिंगली सर फिरोजी, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व्ड टुडे, दैट इज 10th ऑफ जुलाई, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ब्रिलियंट इन्वेंटर निकोला टेस्ला, हुज पायनियरिंग वर्क इन इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सिस्टम्स कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द वे वी जनरेट rate and distribute energy today.
0: और अनुजा, जब हम बात करते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंसी की, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि निर्भरता का मतलब क्या, कि जो देश हैं वो अपने ही स्तर पर अपनी एनर्जी जनरेट करें ताकि उन्हें बाहर से ना इंपोर्ट करनी पड़े। हालांकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ अपने स्तर पर अपने घर पर बिजली पैदा करना नहीं है, बल्कि ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य बनाना भी है। और इसी क्रम में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाकर जो देश है वो आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा में मदद कर सकते हैं।
1: एंड टू मेक इट मोर क्लियर, फ्रॉम इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर पैनल्स टू सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स एंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वाइजली, ईच ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग एनर्जी इन आवर ओन वे और सेविंग एनर्जी इन आवर ओन वे। स्मॉल एक्शंस व्हेन टेकन टुगेदर कैन मेक अ बिग डिफरेंस।
0: बिल्कुल अनुजा, और बात करें अपने देश भारत की, तो भारत का लक्ष्य 2047 तक पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना और 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना है। और जो हमारा देश है अनुजा, बहुत तेजी से इस क्रम में आगे बढ़ रहा है। बात करें जीवाश्म ईंधन के आयात की जगह घरेलू स्तर पर बनने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल देश में हो रहा है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन को भी हम अपना रहे हैं।
1: And not only this, Global Energy Independence Day also celebrates innovation. Around the world, scientists, engineers, entrepreneurs, policymakers, and communities are working together to develop new technologies that will power the future while reducing carbon emissions.
0: बिल्कुल अनुजा, आज का जो दिन है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, आज के दिन हम ऊर्जा बचाने, रिन्यूएबल समाधानों का समर्थन करने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टिकाऊ विकल्प चुनने के अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं।
1: Yes, Firozi, together we can help build a cleaner planet and a brighter future for generations to come. So let's do it.
0: बिल्कुल। अनुजा, अब कार्यक्रम का वो सेगमेंट आ चुका है जहां हम पूरे देश की परिक्रमा करते हैं और अपने श्रोताओं को एक ही जगह पर बैठे बैठे पूरे देश में घुमाते हैं और बताते हैं कि देश में आखिर चल क्या रहा है।
1: तो
0: Absolutely, सबसे yeah. पहले कहां लेकर चल रहे हैं?
1: In fact, you must have heard or you must have traveled in the Kolkata's tram network in West Bengal, Sir Firozi. Kolkata's tram network is the oldest operating electric tramway in Asia and it offers a nostalgic, eco-friendly ride all the way. And in a major push to modernize West Bengal's public transport while preserving its heritage, the state government has unveiled an ambitious roadmap to revive Kolkata's iconic tram network with the state-of-the-art battery-powered trams. The proposed transformation aims to eliminate overhead electric wires, introduce cutting-edge technology, and restore one of the city's oldest transport systems in a modern avatar. We have a report on this.
2: The initiative comes after Kolkata's historic tram service, one of the oldest operating tram networks in Asia, had been reduced to a handful of routes following years of declining operations. Although the service narrowly escaped complete closure, after the intervention of the Calcutta High Court in 2024, tram operations have since remained confined to limited stretches across the city. Determined to restore the network's former prominence, the Transport Department has entrusted state-owned engineering consultancy rights with works to prepare a comprehensive blueprint for the revival of the tram system. The plan envisages a phased modernization program beginning with the

0: routes that are currently operational. Sushmita Mondol, Akashvani News, Kolkata.
1: अनुजा, जहां एक और पश्चिम बंगाल जो है वो अपने ट्रैम नेटवर्क के लिए जाना जाता है, पर एक और चीज है जिसके लिए पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जो है वो बहुत फेमस है.
2: ऑफ कोर्स, इज इट द टी इंडस्ट्री?
1: बिल्कुल, हाँ, बात कर रहे हैं चाय बागान की. पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग से जुड़े उत्तर बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कायाकल्प करने का संकल्प राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लिया है, और इसके लिए अनुजा एक बहुत अच्छी योजना की घोषणा की गई है. उस योजना के बारे में अपने श्रोताओं को बताते चलते हैं.
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है. चाय बागान क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. राज्य स्तरीय समिति ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है. इस योजना के लिए कुल 313 करोड़ 30 लाख रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है. इससे चाय श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है. चाय श्रमिक शिक्षा योजना के लिए 177 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य चाय बागान क्षेत्रों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना व श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है. इससे उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर मिलेंगे. चाय श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 72 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. इस योजना का लक्ष्य चाय बागान क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाना है, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो सके. चाय श्रमिक आश्रय योजना के लिए 63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इसके तहत 321 विश्राम गृहों या रेस्टिंग शेड का निर्माण किया जाएगा. इनमें पहाड़ी क्षेत्रों में 88 और समतल इलाकों में 233 विश्राम गृह शामिल हैं. इन सुविधाओं में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा, स्वच्छ पेयजल, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और आधुनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उत्तर बंगाल विकास विभाग को इस पूरी परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाना है, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके. अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, करशियांग.
2: So where are we going next? Which city?
1: जी अनुजा, अब लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के पुणे अपने श्रोताओं को, और इसके साथ ही परिक्रमा को एक कल्चरल टच भी दे रहे हैं. बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की एक सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की, जिसमें देहू और आलंदी से एक पालकी यात्रा प्रारंभ होती है. आषाढ़ी वारी के लिए श्री क्षेत्र आलंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज और श्री क्षेत्र देहू से संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्राएं प्रारंभ होकर कल पुणे पहुंची. इस पर हमारे संवाददाता एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं.
4: आषाढ़ी वारी के लिए श्री क्षेत्र आलंदी से संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज और श्री क्षेत्र देहू से जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्राएं पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रारंभ हुई. विभिन्न नगरों और गांवों से होकर दोनों पालकियां कल पुणे पहुंची, जहां उनका भक्तिभाव से भव्य स्वागत किया गया. ज्ञानोबा तुकाराम रामकृष्ण हरि और विठल नाम के अखंड जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा. संतों की पादुकाओं के दर्शन के लिए पालकी मार्ग पर हजारों वारकरी, श्रद्धालु और नागरिक उमड़ पड़े. महाराष्ट्र से देश के विभिन्न राज्यों से आई सैकड़ों डिंडिया, ताल, मृदंग, वीणा और भगवा ध्वजों के साथ अभंग और भजन गाते हुए पालकियों के साथ पुणे पहुंची. विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर पालकियों का भव्य स्वागत किया. वारकरियों के लिए पेयजल, महाप्रसाद, चिकित्सा सहायता तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई. पालकी डिंडी यात्रा महोत्सव के लिए पुणे महानगर पालिका, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और आपातकालीन सेवाओं के व्यापक प्रबंध किए. माधव जाय भाई, आकाशवाणी समाचार, पुणे.
2: And from now Pune to Tiruchirappalli, where a major drive is being undertaken to remove Simai Karuvelam, the invasive species in Puducottai. This is a central district for Tamil Nadu.

0: दिल की गहन बीमारी, दुख देखकर वो उड़ जाएगा, हंसेगी दुनिया सारी।
1: आज असद भोपाली जी की जयंती है। ये बॉलीवुड के गीतकार थे। असद का जन्म भोपाल में हुआ था। इनका जन्म का नाम असदुल्ला खान था। इन्होंने साल 1949 में सबसे पहले फिल्म दुनिया के लिए दो गीत लिखे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी और सुरैया की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। 1990 में असद को उनके द्वारा फिल्म मैंने प्यार किया के लिए लिखे गीत कबूतर जाजा के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इसी फिल्म का हम आपको एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: And remembering Sunil Gavaskar today, the master blaster on his birthday. I don't think he needs any introduction, isn't it?
1: जी बिल्कुल अनुजा. और सुनील गावस्कर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
0: नमस्कार.
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है. 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है. अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में. आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है. 5 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ.

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनकपुर, टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडी, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये धूरी अम्बा, डेगा, केंदापानी, बकना, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, घंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के

0: वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल, धरमजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 117 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछाप, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागर पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये झिंगोल, तराई माल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझर, डडईपानी, बुडार, जिडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोड़।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर करंट अफेयर्स दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें आज रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर संजय बंदोपाध्याय का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण आप सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे सुभाष चंद्र भट्ट। आज शाम 7:21 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा हरी पत्तेदार सब्जी की खेती अपनावन आमदनी और पोषण दोनों पावन। साथ ही हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा उद्यानिकी फसलों में नर्सरी प्रबंधन। जानकारी देंगे कृषि विज्ञान केंद्र उद्यानिकी बालोद के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर बलदेव अग्रवाल। संचालन करेंगे भूषण निषाद। प्रस्तुत करता होंगे शशि प्रकाश पांडे। और साथ ही होगा आज का प्रश्न। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे। आज शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में क्रम आजकल का विषय होगा सीखने की ललक सदा रखें बरकरार। और होगा क्रम खेल चौपाल और क्रम ज्ञान सरिता में फुटबॉल के बारे में आप जानेंगे। चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे आज शाम 7:00 रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन रात 9:00

30 मिनट पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसमें वीणा वादन के कलाकार होंगी डॉक्टर माधुरी देवी। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक प्रसारण सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह ही 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में हड्डियों से संबंधित समस्याएं और उपचार इस विषय पर डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। भेंटकर्ता होंगे दीपक हडवार। सुबह ही 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम बातों बातों में, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की होगी। सुबह 9:40 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे भरत लाल हरिंद्र और साथी।

दोपहर में 12 बजे आकाशवाणी संग्रहालय से मेगाथा झरोके से का भाग 7 आप सुनेंगे, कर्तव्य परायण की कहानी लोक गाथा अहिमन रानी। लेखक होंगे डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुति मोहन सी रामानी की होगी। आपके मीत ये गीत फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर में 12:30 पर। ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में कल दोपहर में 1:30 पर। आज की गोट का विषय होगा विश्व जनसंख्या दिवस, साथ ही आर्थिक स्वावलंबन पर स्वरोजगार ये वार्ता आप सुनेंगे। वार्ताकार होंगी श्रीमती वैशाली वर्मा और एक ही कलाकार के गीत आप सुनेंगे। चर्चा का विषय होगा निराशा में ही आशा छुपे हवे और अपन प्रतिभाला पंख देवाओ। कल शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी में अपन गोट का विषय होगा बाढ़त जनसंख्या के परिणाम और क्रम होगा आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत का। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अब सुनिए युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हो गई है पेड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियाँ थी। और अब बाहर मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है, और इस सुहावने मौसम को और भी शानदार बनाने आ गए हैं हम आपके दो रेडियो दोस्त। मैं हूँ आरव शुक्ला
1: और मैं साक्षी मिश्रा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। साक्षी, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके उम्र से नहीं बल्कि उसके सीखने की इच्छा से होती है। जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसका विकास भी रुकने लगता है।
1: बिल्कुल आरव, सीखना केवल स्कूल कॉलेज या किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन का हर दिन, हर अनुभव और हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ नया सिखा जाता है। बस ज़रूरत होती है सीखने की ललक को जीवित रखने की।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम अक्सर सोच लेते हैं कि पढ़ाई पूरी हो गई है, नौकरी मिल गई है, अब सीखने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन बदलती दुनिया में हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नई चुनौतियाँ सामने आ रही है, तो ऐसे में जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है दोस्तों।
1: और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती। कोई नई भाषा सीख सकता है, कोई संगीत, कोई कंप्यूटर, तो कोई बागवानी या चित्रकला। नई चीज़ें सीखना न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।
0: बिल्कुल सही बात कहा साक्षी तुमने। दुनिया के कई महान व्यक्तियों ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक सीखना जारी रखा।
1: बिल्कुल,
0: उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है कि उन्होंने कभी भी खुद को पूर्ण नहीं माना। जैसे हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ी विराट कोहली या रोहित शर्मा को ही ले लो, वो रोज़ क्रिकेट में कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं।
1: बिल्कुल आरव, और दोस्तों दरअसल ना सीखने की जो ललक है वो ही हमें विनम्र बनाती है। जब हम सीखने के लिए तैयार होते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, और यही जो सोच है ना दोस्तों, ये इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
0: साथियों, कई बार हम सोच लेते हैं कि असफलता हमें सीखने से रोक रही है। उन्हें लोगों को लगता है कि अगर गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि गलती ही सबसे बड़ी शिक्षक होती है दोस्तों।
1: बिल्कुल दोस्तों, जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, और अगर उस गिरने के डर से वो कोशिश करना छोड़ दे तो शायद वो कभी चलना सीख ही ना पाए। इसीलिए सीखने की राह में दोस्तों आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं या जो परेशानियाँ हैं उनको रुकावट मत समझिए बल्कि अनुभव समझकर आगे बढ़िए।
0: और आज के समय में तो सीखना पहले से कहीं आसान हो गया है दोस्तों। किताबें हैं, इंटरनेट है, रेडियो है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, अगर इच्छा हो तो ज्ञान दरवाजे पर ही है हमारे।
1: दोस्तों, इसके लिए एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। सवाल पूछने की आदत, जो व्यक्ति सवाल पूछता है वही नए उत्तर खोजता है और वही आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल सच्ची बात है साक्षी। कभी कभी बच्चों के सवाल हमें बड़े ही सरल लगते हैं, लेकिन उन्हीं सवालों में सीखने की शुरुआत छिपी होती है। इसीलिए हमें अपनी जिज्ञासा को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए।
1: बिल्कुल, और दोस्तों सीखना केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी ज़रूरी है। अब जब हम नई बातें सीखते हैं तो हम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समाज को भी तो आगे बढ़ने में योगदान देते हैं ना।
0: तो साथियों, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, नौकरी करते हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, अपने भीतर सीखने की आग हमेशा जलाए रखिए।
1: क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी सोच हमेशा जवान रहती है।
0: और याद रखिए दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने वाले लोग वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ पहले से आता है,
1: बल्कि वो होते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखने का साहस रखते हैं।
0: तो दोस्तों, आप भी रोज़ कुछ ना कुछ सीखें और मन में सीखने की ललक सदा बरकरार रखें, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।

0: खेलों की दुनिया की बड़ी खबर। साल 2026 के खेलों इंडिया यूथ गेम्स का मेज़बानी करेगा तेलंगाना। नवंबर में होगा देश का सबसे बड़े युवा खेल महोत्सव का आयोजन। अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज जारदान का निधन। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांसें।
1: फ्रांस लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराया। एम्बाप्पे ने मेसी के 8 गोल की बराबरी की।
0: इंग्लैंड ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ पहली बार जीती 2 से अधिक मैचें। श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के टॉस रिकॉर्ड की कई बराबरी।
1: लॉर्ड्स में महिला क्रिकेट के नए युग का आगाज, 142 साल बाद पहली बार होगा टेस्ट, भारत इंग्लैंड आमने सामने।
0: कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय दल को मंजूरी। ग्लासगो के पदक की उम्मीदों के साथ उतरेगा भारत।
1: विंबलडन में चेक गणराज्य का दबदबा, पहली बार महिला फाइनल्स में 2 चेक खिलाड़ी आमने सामने।
0: स्पेन का अभेद्य डिफेंस, अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से टक्कर। वर्ल्ड कप में तीसरी बार भिड़ेंगे दोनों टीमें।
1: अंडर 19 क्रिकेट में श्रीलंका का कमाल, भारत को हराकर 2-1 से जीती वनडे सीरीज।
0: जॉन डियर क्लासिक पर क्रिस गटरअप का कब्जा, सीजन की तीसरी पीजीए टूर जीती।
1: रोहित शर्मा लंदन पहुंचे, भारत इंग्लैंड सीरीज से पहले तैयारी शुरू।
0: पुर्तगाल के नए कोच की रेस में जॉर्ज जीसस आगे, मार्टिनेस की जगह संभाल सकते हैं कमान।
1: मेवेदर पैक्याओ रीमैच पर संकट, बहुप्रतीक्षित मुकाबला अनिश्चितकाल के लिए टला।
0: एमएलबी 2026 सीजन आधे पड़ाव पर, प्लेऑफ की

0: में देश भर के हजारों युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खेल मंत्रालय के अनुसार इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना और पूरे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है और जमीनी स्तर पर नई खेल प्रतिभाओं का तलाशना है।
1: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शापुर जादरान का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे थे और भारत में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें देश के क्रिकेट इतिहास के अहम खिलाड़ियों में शामिल बताया। जादरान ने अफगान क्रिकेट के शुरुआती दौर में टीम को मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।
0: फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच में किलियन एम्बापे ने गोल दागकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 8 कर ली है। इस मामले में लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है उन्होंने। मौजूदा विश्व कप चैंपियन फ्रांस अब लगातार तीसरे विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चुनिंदा टीमों में शामिल हो गया है।
1: इंग्लैंड ने भारत को T20 सीरीज में मात देकर नया इतिहास बनाया। ब्रिस्टल में चौथे मुकाबले में 9 विकेट की जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की और भारत के खिलाफ पहली बार 2 या उससे ज्यादा मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज अपने नाम की। कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस दौरान लगातार टॉस जीतने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की।
0: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में महिला क्रिकेट इतिहास का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। भारत और इंग्लैंड महिला टीमों के बीच 10 जुलाई 2026 से एकमात्र मैच होगा जो पुरुष के पहले टेस्ट के 142 साल बाद आयोजित हो रहा है। महिला क्रिकेट के लिए यह मुकाबला एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों टीम इस खास मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी।
1: कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय दल की तैयारियां तेज हो गई है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले इस खेल महाकुंभ के लिए भारतीय दल को मंजूरी दे दी है। भारत के खिलाड़ी कई खेलों में चुनौती पेश करेंगे और पदक तालिका में बेहतर प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगे। टीम इंडिया में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं को भी मौका दिया गया है।
0: विंबलडन इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। महिला सिंगल्स फाइनल में पहली बार चेक गणराज्य की दो खिलाड़ियां आमने सामने होंगी, कैरोलिना मुचावो और लिंडा नोस्कोवा 11 जुलाई को खिताब के लिए भिड़ेंगी। वहीं पुरुष में सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबलों पर भी सभी की नजरें रहेंगी।
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट में अब तक उसके खिलाफ कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। अब क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों ही टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। ऐसे में ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है।
0: श्रीलंका अंडर 19 टीम ने रोमांचक मुकाबले में भारत को मात देकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से अपने नाम कर ली है। निर्णायक मैच में आखिरी ओवर पर रोमांचक जीत की ओर बढ़ी श्रीलंका। श्रीलंका बल्लेबाजों ने चौका और छक्का लगाकर टीम को यादगार जीत दिलाई। भारत को सीरीज गंवानी पड़ी जबकि श्रीलंका ने दबाव बनाकर शानदार प्रदर्शन किया।
1: अमेरिकी गोल्फर क्रिस कॉटर अपने शानदार अंतिम दौर का प्रदर्शन करते हुए 2026 जॉन डियर क्लासिक का खिताब अपने नाम किया। ये 2026 PGA टूर सीजन में उनकी तीसरी जीत है जिससे उन्होंने सीजन के सबसे सफल खिलाड़ियों में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली।
0: भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा इंग्लैंड पहुंच गए हैं और आगामी सीरीज को लेकर अभ्यास शुरू कर दिया है उन्होंने। टीम इंडिया के लिए यह सीरीज अहम मानी जा रही है जहां अनुभवी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लोगों की नजरें रहेंगी।
1: पुर्तगाल फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच को लेकर जॉर्ज जीसस का नाम सबसे आगे चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह मौजूदा कोच रॉबर्टो मार्टिनेस की जगह टीम की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
0: बॉक्सिंग के दिग्गज फ्लॉयड मेवेदर और मैनी पेकाओ के बीच प्रस्तावित मैच फिलहाल टाल दिया गया है। दोनों महान मुक्केबाज के बीच होने वाले इस प्रतीक्षित मुकाबले की नई तारीख को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फैंस को इस ऐतिहासिक भिड़ंत के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।
1: MLB यानी मेजर लीग बेसबॉल 2026 सीजन अपने आधे सफर पर पहुंच गया।

अब टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। कुछ टीमों ने शानदार प्रदर्शन से दावेदारी मजबूत की है, जबकि कई टीमें वापसी की कोशिश में हैं। सीजन के दूसरे हिस्से में प्लेऑफ रेस और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इसी के साथ क्रम खेल चौपाल यहीं तक।

0: साक्षी एक बात बताओ।
1: एक क्यों, तीन चार पूछ लो।
0: अच्छा साक्षी, तुम इतना पिज्जा बर्गर ये सब खाती हो, तो तुम ये नहीं सोचती कि ऐसे खाते रहने से एक दिन तुम फुटबॉल जैसी हो जाओगी, बिल्कुल गोल मटोल?
1: मिस्टर आरव, सबसे पहली बात, मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी को ना खाते वक्त नहीं टोकना चाहिए, ना किसी के खाने पे नज़र लगानी चाहिए। अब तुम्हारे ये बोलने के बाद अगर मेरा खाना छूट गया तो तुमने सोचा है कितना नुकसान हो जाएगा उन सबका जहाँ से मैं ये सब खाती हूँ?
0: बिल्कुल।
1: दूसरी चीज़ कि मैं ना सोच समझ के खाती हूँ, इतना भी नहीं खाती कि मैं बीमार हो जाऊँ। मुझे अपनी सेहत का पता है और तुमसे तो ज़्यादा ही मैं अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ, तो ये सब मत बोलो। बाकी हाँ, क्योंकि तुमने फुटबॉल का जिक्र कर दिया, तो तुम ये बताओ कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तुम्हारी पसंदीदा टीम कौन सी है, किसको सपोर्ट कर रहे हो तुम?
0: साक्षी, मेरी पसंदीदा टीम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसलिए भी है क्योंकि इसमें फेमस फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी है। तो साक्षी तुम बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा टीम कौन सी है?
1: मेरी, मुझे तो भाई फुटबॉल में पुर्तगाल बड़ी पसंद आती है क्योंकि इस टीम से रोनाल्डो खेलते हैं।
0: अच्छा अच्छा साक्षी, एक सवाल है, तुम ये बताओ कि फुटबॉल का शुरुआत कहाँ से हुआ था और कब हुआ था?
1: हाँ हाँ पूछ लो। मतलब तुम्हें लगता है कि मुझे फुटबॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, है ना, इसलिए तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। खैर तुम्हारा ये वेस्ट हो गया करना, क्योंकि मुझे पता है कि फुटबॉल शुरुआत कहाँ से हुई थी फुटबॉल की।
0: अच्छा तो बताओ भी अब।
1: दोस्तों आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत ना 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसने फुटबॉल के नियमों को व्यवस्थित रूप दिया, और इसी कारण इंग्लैंड को आधुनिक फुटबॉल का जन्मस्थान कहा जाता है।
0: तुमने तो बिल्कुल ही सही जानकारी दी साक्षी, बहुत ही अच्छा। साक्षी वैसे इतिहासकार बताते हैं कि गेंद को पैर से खेलने वाले खेल प्राचीन काल में भी कई देशों में खेले जाते थे, लेकिन आज जिस फुटबॉल को हम जानते हैं उसका स्वरूप इंग्लैंड में ही विकसित हुआ है।
1: बिल्कुल। दोस्तों आज फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय संचालन का कार्य फीफा करता है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी।
0: दोस्तों और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ भी कहते हैं, और यही संस्था हर चार वर्ष में फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित कराता है, जिसका आयोजन प्रत्येक चार वर्ष में किसी अलग देश पे होता है। इसमें दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ टीमें भाग लेती हैं।
1: दोस्तों पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में आयोजित किया गया था। ये प्रतियोगिता उरुग्वे में आयोजित हुई थी और इसमें कुल 13 देशों ने भाग लिया था, जिसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला फीफा विश्व कप अपने नाम किया था।

0: हम जब फुटबॉल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को ये क्यों ना बता दें कि इनके नियम क्या हैं, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि फुटबॉल के खेल के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कौन कौन से नियम उसमें फॉलो किए जाते हैं और कितने खिलाड़ी होते हैं, इस खेल में असल में होता क्या क्या है।
1: दोस्तों, यदि हम खेल के नियमों की बात करें तो फुटबॉल दो टीमों के बीच खेली जाती है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों,
0: खेल का मुख्य उद्देश्य गेंद को विरोधी टीम के गोल पोस्ट में पहुंचाकर अधिक से अधिक गोल करना होता है। मैच कुल 90 मिनट का होता है जिसमें 45-45 मिनट के दो हिस्सों में बांट दिया जाता है।
1: दोस्तों, फुटबॉल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह टीम भावना, अनुशासन और सहयोगी भावनाओं को विकसित करता है हम में।
0: और आरव, फुटबॉल में खिलाड़ियों को गेंद को हाथ से छूने की अनुमति भी तो नहीं होती। दोस्तों, सिर्फ गोलकीपर ही होता है जो अपने पेनल्टी क्षेत्र के भीतर हाथों का उपयोग कर सकता है, बाकी सबको इसकी इजाज़त नहीं होती।
1: बिल्कुल दोस्तों, यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर हाथ से गेंद को छूता है तो उसे हैंडबॉल फाउल माना जाता है और विरोधी टीम को फ्री किक या पेनल्टी शूट मिल सकती है इस कंडीशन में।
0: दोस्तों, फुटबॉल में और कुछ बहुत प्रमुख फाउल होते हैं, जैसे विरोधी खिलाड़ी को धक्का देना, पैर रड़ाना, पीछे से टक्कर मारना, जर्सी पकड़ना या फिर जानबूझकर गिराना।
1: दोस्तों, ऐसे फाउल होने पर रेफरी खिलाड़ी को चेतावनी देता है और या तो फिर उसे कोई कार्ड दे देता है। फुटबॉल में मुख्य तौर पर दो कार्ड होती हैं, पीला और लाल कार्ड।
0: दोस्तों, अगर किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिया जाए तो ये चेतावनी का प्रतीक माना जाता है, और यदि किसी खिलाड़ी को दो पीले कार्ड मिल जाते हैं तो उसे लाल कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया जाता है। लाल कार्ड मिलने पर खिलाड़ी तुरंत मैच से बाहर हो जाता है और उसकी टीम को बाकी के सारे मैच कम खिलाड़ियों के साथ ही खेलने पड़ते हैं।
1: दोस्तों, मैदान में खेल को नियंत्रित करने का कार्य रेफरी और उसके सहायक रेफरी का होता है, जो नियमों को पालन करने और सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करते हैं।
0: और दोस्तों, यही नियम फुटबॉल को अनुशासित, रोमांचक और निष्पक्ष खेल बनाते हैं।

0: साक्षी, तुम्हें पता है रायपुर में भी पहले हिंद स्पोर्टिंग मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे स्तर पर आयोजित किया जाता था, और इसमें भाग लेने देश भर से बहुत अच्छी टीमें आती थीं।
1: बिल्कुल आरव, और पहले क्या, यहाँ तो अभी भी फुटबॉल उतने ही उत्साह से खेला जाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बेटी किरण पिस्ता बहुत ही अच्छी खिलाड़ी मानी जाती है, उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी खेले हैं।
0: बिल्कुल साक्षी, राज्य में बहुत से युवा खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल रहे हैं। वैसे साक्षी, बात भारत से जुड़ी चल रही है तो मुझे मेरे प्रिय भारतीय खिलाड़ी की याद आ गई, यानी भारतीय फुटबॉलर की, जिनको वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था।
1: आरव, ये तो सच में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ना?
0: जी।
1: वैसे कहीं तुम सुनील छेत्री की बात तो नहीं कर रहे?
0: जी हाँ साक्षी, मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सर्वाधिक गोल किए हैं, और तुम्हें पता है उनके नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनेक सफलताएं हासिल की है। सुनील छेत्री भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, और उन्होंने सन 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया।
1: दोस्तों, सुनील छेत्री के बाद अब भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान गुरप्रीत सिंह संधू हैं। वैसे आरव, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं?
0: साक्षी, राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में मुख्य रूप से संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, इंडियन सुपर लीग शामिल है, और वर्तमान में पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा इनमें सबसे सफल टीम मानी जाती है।
1: वैसे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम स्थापित है, जिसे सॉल्ट लेक स्टेडियम या विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ फीफा अंडर 17 विश्व कप के कई बड़े मैच और फाइनल्स आयोजित किए गए थे। वैसे आरव, तुम बताओ विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है?
0: अच्छा, तो तुम अब मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हो साक्षी,
1: यही समझ लो।
0: बिल्कुल, तो साक्षी मैं बता दूं कि मुझे इसका उत्तर पता है। उत्तर कोरिया में स्थित रुंगराडो फर्स्ट मई स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है दोस्तों, लेकिन इस स्टेडियम में अब तक एक भी फीफा वर्ल्ड कप खेला नहीं गया है।
1: वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है जहां आज भी फीफा विश्व कप खेला जाता है? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, मैक्सिको सिटी में स्थित एस्टाडियो एस्टेका विश्व का सबसे पुराना मैदान है जहां पर आज भी फीफा विश्व कप का आयोजन होता है, और ये मैदान बहुत ऐतिहासिक है दोस्तों।

0: साक्षी, तुम्हें पता है कि अभी वर्तमान में फीफा में कुल कितने टीमें शामिल हैं?
1: ये नहीं पता मुझे, तुम बताओ कितनी टीमें हैं कुल फीफा में?
0: साथियों, अभी वर्तमान में फीफा में कुल 211 टीमें हैं जो 6 महाद्वीपीय परिसंघों में बंटी हुई है, जिनमें एशिया, अफ्रीका, उत्तर और मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और यूरोप शामिल है।
1: अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फीफा विश्व कप में खेलने के लिए किसी भी देश की टीम को बहुत से नियमों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि देश को फीफा और अपने महाद्वीपीय संघ की सदस्यता लेनी होती है, विश्व कप क्वालिफायर में सफल होकर स्थान हासिल करना पड़ता है, और अच्छा फीफा रैंक भी बरकरार रखना होता है।
0: वैसे दोस्तों, फीफा में अब तक 23 संस्करण हो चुके हैं, पर भारत अब तक एक भी में शामिल नहीं हो पाया, यानी खेल नहीं पाया है। हालांकि 1950 में विश्व कप में भारत ने क्वालिफाई किया था, पर कुछ परिस्थितियों के चलते भारत शामिल नहीं हो पाया था। वर्तमान में भारत फीफा के 138वें रैंक पर है, और भारत ने सर्वाधिक रैंक 96 हासिल किया है, जो उसने 1996 में हासिल किया था।
1: दोस्तों, फीफा 2026 का फाइनल मुकाबला भी करीब आ रहा है, जो कि इस बार न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 19 जुलाई को खेला जाएगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, देखिए ना, 48 टीमों से प्रारंभ हुई इस टूर्नामेंट अब सिर्फ 8 टीमों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, जिसमें फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने अपना जगह बना लिया है।
1: दोस्तों, इन्हीं 8 टीमों में से कोई एक जल्द ही फीफा 2026 की ट्रॉफी भी हासिल कर लेगी। सच में आरफ, कितना शानदार खेल है ना ये।
0: बिल्कुल साक्षी, फुटबॉल हम में खेल भावना जागृत करता है, और वैचारिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी हमें स्वस्थ बनाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कहा जाता है कि फुटबॉल खेलने वाले लोग हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं।
0: जी हाँ साक्षी, खेल के दौरान मन एकाग्र रहता है और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। साथ ही दोस्तों, निरंतर दौड़ते रहने से शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है, और यही सब कार्य व्यक्ति के मन के तनावों को और भी कम कर देती है और आत्मविश्वास भी बढ़ा देती है।

0: दोस्तों, आज खेल फुटबॉल और उससे जुड़ी बातों में इतना सारा मन लग गया कि हमें वक्त का पता ही नहीं चल पाया।
1: बिल्कुल दोस्तों, देखिए ना, घड़ी में 6 बजने को हो रहा है और आप सबसे विदा लेने का वक्त आ चला है। तो इससे पहले जानते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल का कार्यक्रम सजेगा छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत।
0: तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त साक्षी मिश्रा।
1: और मैं हूँ आरव शुक्ला। और आप स्वीकारें हमारा नमस्कार।

0: अभी आप युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। 6 बजने को हैं, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
2: दिस इज आकाशवाणी
0: का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान।

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहले सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। रेलवे हा छत्तीसगढ़ में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाए बर 175 करोड़ रुपया करीस मंजूर। प्रदेश सरकार ह एसो खरीफ सीजन बर 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। अब तक 3,62,000 क्विंटल बीज बांटे गीस। औ दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिला के जयदीप साहू जीतीस दुसरैया स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार ले। रेलवे हा रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा रखरखाव केंद्र बनाए बर 175 करोड़ रुपया मंजूर करे है। रेल मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना भारतीय रेल के विद्युत इंजन बेड़े के तेजी ले होवत विस्तार और जम्मो नेटवर्क में माल ढुलाई और यात्री परिचालन के बढ़ोतरी लचेत में राखत बुनियादी ढांचा ला बेहतर बनाए के प्रयास के हिस्सा आए। उपराहा प्राथमिक केंद्र ले रेलवे हा मौजूदा बुनियादी ढांचा के बेहतर इस्तेमाल कर पाही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हकीन है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बनावत है। जौन मानक E20 पेट्रोल ले करीबन 20 रुपया सस्ता होही। E85 सिर्फ ओ गाड़ी मन बर उपलब्ध होही जौन विशेष रूप ले ए ईंधन के उपयोग बर डिजाइन करे गए है। उमन यहू कहिन कि इथेनॉल मिले पेट्रोल ले इंजन ला नुकसान और गाड़ी ऊपर उल्टा प्रभाव पड़े के आशंका लगलो खारिज करिन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा जगदलपुर के डिमरापाल के कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग के पहली और छत्तीसगढ़ के दूसरैया अत्याधुनिक कैथ लैब के लोकार्पण करीन। इस सुविधा के शुरू होए ले हृदय रोगी मल्ला एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और आने आधुनिक इलाज अब स्थानीय स्तर में होही। ये दौरान स्वास्थ्य मंत्री है किहीन कि अब मरीज मल्ला इलाज बर बड़े शहर ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ी संगे संग उमल्ला बेरामा इलाज घलो मिल सकी। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलैया अनुदान राशि ला 50,000 ले बढ़ा के 1,00,000 रुपया करे जाही। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में काली मंत्रालय में होए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के पहली बैठक में ये निर्णय लेगी। बैठक में गिग वर्कर्स चरवाहा और असंगठित कर्मचारी मन के मेधावी लैका मन बर नवा कल्याणकारी योजना तैयार करे ऊपर घलो सहमति बनीस। श्रम मंत्री पंजीकृत श्रमिक मन के EKYC और आधार पंजीयन कराए के संग पात्र हितग्राही मन तक योजना के लाभ पहुंचाए के निर्देश दें हैं। प्रदेश में ये बेरा खेती किसानी के काम हा जोर धर ले है। अब तक 20,14,000 हेक्टेयर ले ज्यादा क्षेत्र में धान मक्का कोदो कुटकी राहेर मूंग के संगे संग आने फसल की बोनी करे जा चुके है जौन लक्ष्य के 41% आए। बता दें कि एसो खरीफ सीजन में राज्य सरकार हा 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। एति कृषि विभाग के अधिकारी मन बताइन कि एसो खरीफ फसल बर प्रदेश में 4,95,000 क्विंटल प्रमाणित बीज बांटे के लक्ष्य रखे गए है। उन्हें अब तक 3,62,000 क्विंटल बीज किसान मल्ला बांटे गीस है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कबीरधाम जिला के बोड़ला इलाका में बनैया सड़क के राज्य स्तरीय जांच करेगी। एक हर बाद निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता में लापरवाही पा जाए में सहायक और उप सहायक अभियंता ला निलंबित करे के निर्देश देगी। संगे संग क्षतिग्रस्त सड़क के हिस्सा ला दोबारा बनाए और ठेकेदार ला ब्लैक लिस्ट करे बर घलो कहेगी से। सुनैया मल्ला बता दान कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ये दारी छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ले गए भेंट वार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 11 जुलाई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले एफएम और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बाढ़थन बांचे समाचार कोती। रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के 17 नवा प्रकोष्ठ पदाधिकारी मन के पहली कार्यशाला आयोजित करेगी। जी हां, प्रकोष्ठ के भूमिका और दायित्व ऊपर गोटबात होइस। ये कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन के तीनों प्रदेश महामंत्री, सबो 17 प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और सह संयोजक के अलावा अब्बड़झन कार्यकर्ता मन मौजूद रहीन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ह प्राकृतिक आपदा ले होवैया मौत ऊपर मुआवजा दे बर राज्य सरकार के नीति ऊपर अहम फैसला सुनाए है। न्यायाधीश संजय के अग्रवाल के एकल पीठ स्पष्ट कीन है कि आंधी तूफान, भारी वर्षा और हवा गरेर के बेरा पेड़ ले गिर के होए मौत घलो प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में आते। कोर्ट ह राजस्व विभाग डहर ले राजनांदगांव जिला के मोहला इलाका में एक मनखे के मौत मामला में मुआवजा दे ले इनकार करे के आदेश ला निरस्त करत ओकर बेटा ला 30 दिन के भीतर 4,00,000 रुपया मुआवजा के निर्देश दी से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर जिला के समोदा में 128 करोड़ रुपया ले ज्यादा के आने आने विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। ओमन रीवा गांव में करीबन 4 करोड़ रुपया के लागत ले स्टाफ डैम बनाए के संग कतकोन विकास कार्य के घोषणा करीन। ये बेरा मुख्यमंत्री है बतायन कि राज्य सरकार हा सुशासन, विकास और जन कल्याणकारी योजना ला प्राथमिकता देवत प्रदेश के सबो इलाका मा बुनियादी सुविधा के विस्तार करत है। दक्षिण अफ्रीका मा 4-12 जुलाई तक आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप मा दुर्ग जिला के जयदीप साहू हा व्यक्तिगत रूप ले दूसरैया स्वर्ण पदक हासिल करिस है। जयदीप हा दूसरैया पारी के क्लासिक प्रतियोगिता के तहत 66 किलो वर्ग में जोरदार प्रदर्शन करत स्वर्ण पदक अपन नाव करीस। एखर ले पहली जयदीप हा यही प्रतियोगिता के पहली चरण में बीते 6 जुलाई के इक्विप्ड कैटेगरी में पहली स्वर्ण पदक जीते रहीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कीन है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट प्रदेश के माई लोगन मन बर प्रेरणा के माध्यम बन गए है। काली रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिक उत्सव में उमन दीदी के गोठ और कॉफी टेबल बुक, बिहानवाणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक के विमोचन करीन। ये बेरा मुख्यमंत्री हा सफलता की कहानी साझा करैया माइलोगन मनला सम्मानित करत कीन कि कार्यक्रम के एक बछर में प्रसारित 12 एपिसोड ले माइलोगन मनला आत्मनिर्भर, नवाचार और स्वरोजगार के प्रेरक जानकारी मिलिस है। अब आप थोरकुन समाचार सारमा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग डहर ले सूबेदार, उपनिरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर के भर्ती बर प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई के 22 केन्द्र में

0: आयोजित करे जाही। परीक्षा बिहनिया 10 बजे ले मझनिया 12 बजे तक चलही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पहली बछर में प्रवेश पर ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज ले शुरू होगी से। इच्छुक अभ्यर्थी मन 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकत हैं। कोंडागांव में पुलिस 43 शिक्षक मन ले कुल 12 करोड़ रुपया के ठगी के मामला में 5 जन आरोपी मन लगी गिरफ्तार करे है। सरगुजा जिला के सीतापुर थाना इलाका में सोनतराई गांव के देवगढ़ मोड़ के तीर एक ठन गाड़ी में आगे लगी। हादसा में गाड़ी चलैया संग 3 जन गंभीर रूप ले झुलस गिन। दुर्ग जिला के भिलाई स्टील प्लांट ले लोहा स्क्रैप चोरी के मामला में प्लांट के SMS 3 के GM और इंजीनियरिंग एसोसिएट ला गिरफ्तार करेगी। ये मामला में अब तक 15 आरोपी पकड़े गिन है। और बारनवा पारा अभ्यारण्य में 3 ठन चीतल के मौत होगी। वन विभाग के अनुसार एमाले 2 ठन नर चीतल के मौत आपस में लड़े ले होइस, वे 1 ठन चीतल के शिकार होए के आशंका बताएगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। रेलवे है छत्तीसगढ़ में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाए बर 175 करोड़ रुपया करीस मंजूर। प्रदेश सरकार है एसो खरीफ सीजन पर 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। अब तक 3,62,000 कुंटल बीज बांटेगी। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिला के जयदीप साहू है जीतीस 2रैया स्वर्ण पदक।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य समकक्षीयेण सह वार्तालापं विधातुं द्विदिवसीय यात्रायां ऑकलैंड नगरं संप्राप्तवान्। केन्द्रेण मादक द्रव्याणां नियमेषु संशोधनं कृत्वा अधिक मद्ययुक्तानां औषध सूत्रीकरणानां विनियमनं विहितम्। उत्तराखंड राज्ये अत्यधिक वृष्ट्यै ऋतु विभागेन रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ऑकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमंत्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात्, यत्र भारतस्य न्यूजीलैंड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ समग्रस्य द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य समीक्षां करिष्यतः, यस्मिन् विगत द्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापार वाणिज्य रक्षादि क्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत्। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैंड देशस्य यात्रा 40 वर्षेषु प्रथमा यात्रा भविष्यति। श्रीमोदी प्रमुखेभ्यः उद्यमेभ्यः क्रीडकेभ्यः च सह संवादं साधयिष्यति। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये विद्यमानस्य जनानां मध्ये दृढसम्बन्धस्य प्रदर्शनपूर्वकं प्रधानमंत्री अस्यां यात्रायां भारतीय प्रवासिनां विशाल समुदायमपि सम्बोधयिष्यति। इतः प्राक् प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य ऐतिहासिकं उच्चस्तरीयं राज्यपर्यटनम् आधिकारिकरूपेण समापितम्, येन भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागित्वस्य कृते भविष्य प्रतिरोधकं प्रारूपं निर्मितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य सर्वकाराय नागरिकेभ्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणे एंथनी अल्बनीज वर्याय च स्वस्य यात्रायाः समापन समये स्नेहपूर्ण आतिथ्याय कार्तज्ञ

0: प्रदेशे, बिहारे, पश्चिम वंगस्य उपहिमालयीय क्षेत्रेषु, सिक्किमे, ईशान्य भारते, देशस्य उत्तर भागेषु च प्रचंडतः अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् आईएमडी इत्यस्य वैज्ञानिकः डॉक्टर शशिकान्तः अवदत् यत् अद्य श्वः च दिल्ली एनसीआर क्षेत्रस्य कृते कापि पूर्वसूचना नास्ति। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे प्रथमायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां फ्रांस देशेन मोरोक्को देशः 2-0 इत्यंकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां प्रविष्टम्। अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
3: हेलो, नमस्कार दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है
2: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
4: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक बहू है जिसका नाम शशि है। शशि एक गरीब परिवार की है। उनके हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। शशि अपने नाम की तरह ही बहुत शांत है। शशि अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती है। हर छोटे बड़े काम वो बहुत लगन से करती है। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। उसकी सास शशि को सम्मान नहीं देती है जो एक बहू को मिलना चाहिए। बस अपनी बड़ी बहू को उसकी गरीबी के ताने सुनाती रहती है। सास और ननद की सोच उस वक्त ज्यादा गिर गई जब शांति देवी अपने छोटे बेटे की शादी एक अमीर परिवार में कर देते हैं। उनका छोटा बेटा एक सरकारी नौकरी पर काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था, इसलिए शांति जी और उनकी बेटी अंजलि अपने छोटे बेटे विजय और छोटी बहू की बड़ाई करते नहीं थकती थी। घर का सारा काम शशि यानी बड़ी बहू करती थी। छोटी बहू तो बस सारा दिन फोन और किटी पार्टी और घूमने फिरने में लगी रहती, क्योंकि वह एक अमीर घर से थी तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और विजय ने भी बोल दिया था कि मेरी बीवी को काम करने की आदत नहीं है और ज्यादा परेशानी होती है तो एक नौकरानी रख लो। तब शांति जी ने कहा, नौकरानी की क्या जरूरत है, घर में काम ही कितना है, जो काम वाली रखे, पहले भी तो घर के काम होते थे, अब भी हो जाएंगे, सिर्फ एक छोटी बहू ही तो ज्यादा हुई है घर में, एक के आ जाने से काम ही कितना होता है, जो अलग से काम वाले रखे। सास और पति के शय पाकर तनुजा अब और भी बेफिक्र हो गई थी और कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हर काम के लिए दो टुक जवाब दे देती थी। पहले की तरह शशि काम करती रही, किसी से कोई शिकायत ना करती। श्रोताओं, आपको अमीर और गरीब के भेदभाव को दर्शाने वाली कहानी को सुनाने के लिए पेश करते हैं एक नाटक।

0: हेलो दीदी, कैसे हो आप?
1: हेलो भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। दीदी, कल आपके भतीजे का जन्मदिन है, आप आ सको तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
1: पर भाभी, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, आपके जिया जी को कुछ जरूरी काम है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी।
0: ठीक है दीदी, लेकिन कोशिश करना आने की।

0: देखती हूँ। अच्छा भाभी, बाद में बात करती हूँ, थोड़ा काम है।
1: थोड़ी देर में अंजलि अपनी माँ को फोन करती है वहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए कि घर में कल का क्या प्रोग्राम है।
0: हेलो माँ, कैसी हो आप? घर में सब ठीक है ना?
2: हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना?
0: माँ, बड़ी भाभी का फोन आया था, बोल रही थी चीकू का जन्मदिन है, जरूर आना। माँ, क्या कोई बड़ी पार्टी रखी है?
2: अरे नहीं बेटा, ये कहाँ बड़ी पार्टी रखेंगे, बस घर में ही केक काटेंगे। तू रहने दे, फालतू में आने जाने का खर्चा ही होगा।
0: हाँ माँ, इसलिए मैंने भी बहाना बना दिया कि आपके जिया जी को जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी।
2: ठीक किया बेटा तूने।
0: हाँ माँ, मेरा भी बिल्कुल भी आने का मन नहीं है, कुछ लेती देती तो है नहीं, बस एक शगुन का लिफाफा पकड़ा देती है और बस खाना खिला देती है। पिछली बार जो साड़ी दी थी वो आउट ऑफ फैशन थी, इससे अच्छा तो वो ना ही देती।
2: तुम ठीक कहती हो बेटी, है भी तो गरीब घर की, उसके घर से तो कुछ आता नहीं, तो क्या पता होगा लेन देन क्या होता है, तू रहने ही दे आने को।
1: और दोनों फोन रखते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन बुआ के इंतजार में चला गया, परंतु बुआ नहीं आई। शशि सारा दिन काम में लगी रहती है पर कभी किसी से शिकायत नहीं करती, और एक दिन शशि की माँ की तबीयत खराब हो गई। शशि अपने मायके चली गई और शांति जी ने अपनी छोटी बहू को काम करने के लिए कहा, तो तनुजा ने साफ साफ मना कर दिया।
2: बेटा तनुजा, एक कप चाय बना लो और हाँ, नाश्ता भी बना देना।
3: क्या मैं और नाश्ता बनाऊंगी? ये सब मेरे से नहीं होगा।
2: अरे ये क्या बात हुई, तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा?
3: वो मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं बनाऊंगी, बस कह दिया।
4: अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है?
2: अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तो बस तनुजा को इतना ही बोला कि नाश्ता बना लो, पर ये तो मुझे ही धमकाने लगी।
3: देखो विजय, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये काम वाम मैं नहीं करने वाली।
4: अरे माँ, आप इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? माँ, तनुजा नाश्ता नहीं बनाना चाहती तो क्या हुआ, आप भी तो बना सकती हो ना।
2: क्या मैं इस उम्र में काम करूं?
4: तो क्या हुआ माँ, और माँ अगर तुम नहीं बना सकती तो एक काम वाली रख लो, पर ये चिक चिक बंद करो प्लीज।
2: ठीक है बेटा।
1: कुछ दिन बाद जब शशि अपने मायके से घर वापस आती है तो सास को काम करते हुए देखती है। जल्दी से अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करके अपनी सास शांति देवी को मना करती है और खुद सारा काम करने लगती है। सास ये सब देखकर और अपने द्वारा किए गए बर्ताव जो उसने आज तक शशि के साथ किया था उसके लिए शर्मिंदा होती है। अगले महीने शांति जी के छोटे बेटे विजय और बहू तनुजा की शादी की पहली सालगिरह थी। ननद अंजलि बहुत उत्साहित थी कि उसके छोटे भाई और भाभी जरूर कोई बड़ी पार्टी देंगे, परंतु अभी तक उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया था। अंजलि ने खुद ही अपनी माँ को फोन किया।
0: हेलो माँ, तुम कैसी हो? माँ, छोटी भाई और भाभी की सालगिरह आ रही है, क्या घर में पार्टी नहीं होगी?
2: पता नहीं बेटा, पर मैंने सुना तो था, वो फोन पर होटल बुक करने की बात कर रहे थे।
0: अच्छा, लगता है कोई सरप्राइज पार्टी रखेंगे, मैं तो जरूर आऊंगी। मैंने भाई के लिए शर्ट और भाभी के लिए एक सूट लिया है गिफ्ट के लिए।
1: बिना बुलावे का इंतजार किए अंजलि छोटी भाभी की सालगिरह के लिए अपने मायके पहुंच जाती है और तनुजा के कमरे में जाकर सालगिरह की बधाई देने के लिए जैसे अंजलि ने तनुजा को गले लगाना चाहा, उसने हाथ से रुकने का इशारा किया।
3: अरे अरे दीदी, अभी अभी तो मैं बाल सेट करवा के आई हूँ।
0: ओ सॉरी सॉरी भाभी, आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी, आप लोगों ने तो बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं ही आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ गई।
3: थैंक्स दीदी, वो हमने बाहर का प्रोग्राम रखा था तो किसी को बुलाया नहीं। थोड़ी देर में आपके भाई आने वाले हैं, फिर हम दोनों होटल के लिए निकल जाएंगे।
0: हम दोनों? मतलब आप लोगों ने कोई पार्टी नहीं रखी है?
3: दीदी, पार्टी तो रखी है, लेकिन हमने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बुलाया है।
0: और फैमिली?
3: अरे दीदी, वो क्या है ना, वहाँ ड्रिंक वगैरह होगा तो फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होगा।
0: पर भाभी?
3: और हाँ, हम आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर देंगे, आप सब खा लेना और हमें आने में देर हो जाएगी।
4: तनुजा, तुम रेडी होगी या नहीं? जल्दी करो।
3: हाँ, मैं रेडी हूँ।
1: पर भाई,
4: क्या हुआ अंजलि?
0: भाई, पार्टी तो घर में होनी चाहिए, या सभी को यहीं बुला लो।
4: अंजलि, क्या कह रही हो तुम?
0: भाई, बड़ी भाभी और भैया भी तो घर में ही पार्टी करते हैं और पूरी फैमिली एंजॉय करती है।
4: अरे, पूरा साल फैमिली के साथ ही तो रहते हैं, और एक दिन हम बाहर पार्टी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? और हाँ अंजलि, बने बनाए मूड को खराब मत करो।
0: क्या, मैं आपका मूड खराब कर रही हूँ? बड़े भाई भाभी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं।
4: अंजलि, तुम जाओ, नहीं तो हमें पार्टी के लिए देर हो जाएगी।
0: ठीक है, मैं जा रही हूँ।
1: और अंजलि सोचने लगती है और माँ के पास जाकर सारी बात बताती है कि किस प्रकार छोटे भाई और भाभी ने फैमिली के साथ शादी की सालगिरह ना मनाकर दोस्तों के साथ होटल में जाकर पार्टी करना सही समझा।
0: माँ, बड़ी भाभी ने तो आज तक परिवार के बिना कभी कोई सालगिरह और कोई जन्मदिन नहीं मनाया। केक भी माँ के हाथों से ही कटवाती है और कितना आदर और सम्मान से बुलाती है। और एक हम है जो उसके बुलाने पर नखरे करते हैं। और छोटी भाभी ने कितनी सहजता से बोल दिया, फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होगा।
2: अरे बेटा, तेरी बड़ी भाभी ना हो तो कोई हमें रोटी भी ना दे, और एक हम है जो उसकी कदर ही नहीं करते।
0: हाँ माँ, तुम ठीक ही कहती हो। आज मैं भी अपनी गलती और बड़ी भाभी के साथ किए हुए व्यवहार से शर्मिंदा हूँ।
1: और तनुजा और छोटा भाई विजय भी तैयार होकर होटल के लिए चले जाते हैं। शांति जी और अंजलि उनका मुंह देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ जाता है, लेकिन उनके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। तभी बड़ी बहू शशि ने आकर पूछा,
5: दीदी, माँ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना ठंडा हो रहा है।
2: बहू, वो मेरे पेट में ना गैस बन रही है, मैं ये भारी तला हुआ खाना नहीं खा सकती। बेटा, तुम मेरे लिए दलिया बना दे।
5: जी माँ जी, ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ।
0: भाभी, मैं भी दलिया ही खाऊंगी, मेरे लिए भी दलिया बना दो, ये खाना बहुत तीखा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा।
1: शशि मुस्कुराते हुए रसोई में गई और दलिया बनाकर ले आई। आज वो दलिया दोनों माँ बेटी को बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसमें शशि का अपनापन और सम्मान जो मिला था।

0: श्रोताओं, हम किसी की भावना और अपनेपन को दौलत से नहीं माप सकते। शशि गरीब घर की जरूर थी, परंतु उसमें सबके लिए सम्मान की और आदर की भावना थी। हमें कभी भी किसी को उसके पैसे या पोशाक देकर सम्मान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार और उसके अच्छे कार्य को देखना चाहिए। श्रोताओं, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।
1: तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
2: 9311504040।

0: 04। जी हाँ, 9-3-1-1-5-0-4-0-0-4।
1: अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र के लिए 175 करोड़ रुपए किए मंजूर। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार यह परियोजना भारतीय रेल के विद्युत इंजन बेड़े के तेजी से हो रहे विस्तार और पूरे नेटवर्क पर

0: माल ढुलाई और यात्री परिचालन बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। अतिरिक्त प्राथमिक केंद्रों से रेलवे मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, साथ ही रायपुर मंडल भविष्य में तकनीकी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। श्री पुरी ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने MyGOV के सहयोग से प्रस्तावित गांवों के भीतर की सड़कों की कोडिंग और ग्रेडिंग प्रणाली पर नागरिकों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय समुदायों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक नागरिक और संस्थाएं 14 जुलाई तक MyGOV पोर्टल पर उपलब्ध जन परामर्श में भाग लेकर अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में गांवों के भीतर की सड़कों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण और मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाओं, डाक कुरियर वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना के विकास तथा डिजिटल नेविगेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित प्रणाली इन चुनौतियों का समाधान करते हुए अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगी। रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के 17 नए प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के लिए पहली कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रकोष्ठों की भूमिका और दायित्वों पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन के तीनों प्रदेश महामंत्री, सभी 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक और सह संयोजक के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे पार्टी की रीति नीति तथा केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं।
1: भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो आज नए गठन के बाद, नया दायित्व संभालने के बाद पहला 17 प्रकोष्ठों का आज ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित था और हम लोगों ने उनको आग्रह किया है कि जो मतलब हेतु है प्रकोष्ठों के गठन का कि जिस जिस क्षेत्र के संयोजक हैं प्रकोष्ठ के, उन वर्ग के लोगों तक पार्टी की रीति नीति को और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाएं, इसका आग्रह हम लोगों ने किया है।
0: प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जाएगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गिग वर्कर्स, चरवाहों और असंगठित कर्मकारों के मेधावी बच्चों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने पर भी सहमति बनी। श्रम मंत्री ने पंजीकृत श्रमिकों का EKYC और आधार आधारित पंजीयन कराने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने की राज्य सरकार की नीति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के मामले में मुआवजा देने से इनकार करने के आदेश को निरस्त करते हुए उसके बेटे को 30 दिन के भीतर 4,00,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में जल जीवन मिशन 2.0 की समीक्षा की। बैठक में तय किया गया कि हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन योजनाओं का रखरखाव ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के माध्यम से होगा। वहीं योजनाओं के संचालन और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति जांचने के लिए सोशल ऑडिट कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कबीरधाम जिले के बोरदा क्षेत्र में बनी सड़क की राज्य स्तरीय जांच की गई। जांच के बाद निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर सहायक अभियंता और उप अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का हिस्सा दोबारा बनाने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने को भी कहा गया। श्रोताओं, प्रादेश

समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 11 जुलाई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। कल रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिकोत्सव में उन्होंने दीदी के गोठ कॉफी टेबल बुक, बिहान श्रेणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सफलता की कहानी साझा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और कहा कि कार्यक्रम के एक वर्ष में प्रसारित 12 एपिसोड से महिलाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार और स्वरोजगार की प्रेरक जानकारियां मिली हैं। दक्षिण अफ्रीका में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया है। जयदीप ने दूसरे दौर की क्लासिक प्रतियोगिता के तहत 66 किलो वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले जयदीप ने इसी प्रतियोगिता के पहले चरण में बीते 6 जुलाई को इक्विप्ड कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जगदलपुर के डिमरा पाल स्थित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस सुविधा के शुरू होने से हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य आधुनिक उपचार अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई को 22 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर जिले के समोदा में 128 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत की अध्यक्षता में 12 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी 12 जुलाई को रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख प्रौद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से फरसगांव, केशकाल, बड़े डोंगर, धनोरा, विश्रामपुरी सहित कई क्षेत्रों के शिक्षकों से पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगी की थी। बलरामपुर जिले के ग्राम बगाड़ी नाका के पास आज हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में आज ब्लास्ट फर्नेस के रॉ मटेरियल एरिया में संचालित ओवर ब्रिज क्रेन के टूटकर गिरने से क्रेन ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोनतराई स्थित देवगढ़ मोड़ के पास एक हाईवा में आग लग गई। इस हादसे में वाहन चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट से लौह स्क्रैप चोरी के मामले में पुलिस ने प्लांट के SMS3 के GM और इंजीनियरिंग एसोसिएट को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बारनवापारा अभ्यारण्य में 3 चीतलों की मौत हो गई है। वन विभाग के अनुसार इनमें से 2 नर चीतलों की मौत आपसी संघर्ष में हुई, जबकि 1 चीतल की मौत शिकार से होने की आशंका जताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र के लिए 175 करोड़ रुपए किए मंजूर। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजे हैं। लीजिए अब आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का।
1: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी

0: मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: एक विकेट खोकर के। और इसके साथ ही मेज़बान टीम ने 5 मुकाबलों की यह श्रृंखला जो है 3-0 से अपने नाम कर ली है, और ये पहला मौका है जब इंग्लैंड ने भारत के साथ 2 या उससे अधिक मैचों की कोई श्रृंखला T20 श्रृंखला जीती है। और पहला मैच इस श्रृंखला का जो है बारिश के कारण रद्द हो गया था, और अंतिम मुकाबला श्रृंखला का साउथहैम्पटन में कल खेला जाना है, जहां भारत की उम्मीदें होंगी कि अंतिम मुकाबले को जीत करके एक अच्छी शुरुआत दी जाए अपने T20 श्रृंखला की, जो कि 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया ने जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि सविता और बीचू देवी खरीबाम को गोलकीपर के तौर पर टीम में तैनात किया गया है। इशिता चौधरी, सुशीला चानू और ज्योति, शिल्पी डबास, निकी प्रधान, साक्षी राणा, सलीमा टेटे, नेहा, दीपिका सोरंग को टीम में मौका दिया गया है, जबकि बलजीत कौर और ऋषिका भी टीम का हिस्सा हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है, और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति

0: ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक

0: विनय उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े

0: उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगे।
1: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
2: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
2: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busedi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। अब आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का।

आप सुन रहे हैं आईना फिल्म का गीत कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत से सवारा है दिलीप सेन समीर सेन ने।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस

0: जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के,
2: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे,
3: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
4: आपकी कसम, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। करंट अफेयर्स कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप संजय बंदोपाध्याय का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण सुन रहे थे। तबले पर संगीतकार थे राम स्वरूप रतोनिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। यादें सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु साहू का नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म अब्दुल्ला से मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं और आर.डी. बर्मन का संगीत है। सुनना चाहा है रमजान खान सिकंदर, असरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फेज खान, शांति नगर भाटापारा से। वर्धमान रेडियो श्रोता संघ सिमगा से सविता, प्रदीप जैन, मोनिका जैन और शिवानी जैन। कोरदा से कलीराम यादव, छतराम यादव, शेष राम यादव। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से सुब्रत चौधरी। कुलारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश कश्यप और अनुराग कश्यप। सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य आशीष और प्रकाश सेन। बागबारा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन। टेकापार बालोद से चिंताराम यादव, रवि प्रकाश यादव। गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कजरीबाई देवांगन, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन। ग्राम बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। देवपुरी रायपुर से ऋषभ शारवा, वेदा शारवा, मनीषा शारवा और दिनेश शारवा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

आंचल लीजिए, सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। सुनना चाहा है चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका सुशीला दादी, निजामाबाद आंध्र प्रदेश से वासुदेव सावलानी, अशोक कुमार सावलानी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, दरचुरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, शीतला नगर दुर्ग से अर्पा पैरी, पार्वती राधा चंद्राकर, रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन और वाणी वर्मा, मगरलोड से पुनुराम साहू राज, तेजेश्वरी साहू, राश्री और राजवीर साहू, भाटापारा से राम कुमार रावत, अमेरिका रावत, गणेश कार्तिक और युवराज रावत, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना बिट्टू कुमार, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी और उज्जल वर्मा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

दूसरा आदमी। लीजिए सुनिए यादें का अगला गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने। सुनना चाहा है कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर और दिनेश सेन। पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान। कोरदालवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद, गुलशन कुमार, शिव कुमारी, हेमलता और वेद किरण वर्मा। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और झाविंद्र कुमार वर्मा। भाटापारा से दानसी रावत, दानू पद्मनी, शुभम सौरभ रावत, नीरज रावत। पेंशनबाड़ा रायपुर से रोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्य प्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन, बेबी अदिति और तन्मय यादव। रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, पटेल नगर मलोट पंजाब से। और आप हैं सिर्री गातापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा साहू, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका और पूनम साहू।

गोरा और काला, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और मौसिकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनना चाहा है अरमरी खुर्द बटरेल दुर्ग से चुरामन लाल वाडे, जैनी वाडे, विवेक कुमार वाडे, नेहा वाडे, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, वैभव और विपुल और करुणा कामरे, दरसिवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा रायपुर से हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित, अमीन यादव, गिरीश करण और युवान डाबेश यादव, नारायण यदु, पुनीत यदु, राकेश और आरजी यदु भाटापारा से हैं। भाटापारा से ही श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, नवगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, हरदेवलाल पारावार सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति, ऋचा, गायत्री वैष्णव, भीषम दास मानिकपुरी, शीतलानगर शीतला मंदिर वार्ड एक अहिवारा जिला दुर्ग से पेंटर डबल कुमार डब्बू धीवर, जतीन हेमन राज बाबू धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत राजू धीवर, लव्य कुमार, लक्ष्य कुमार, लच्छू धीवर, आंचल माही, बेबी नानू, पार्थ, अनमोल और राजवीर धीवर, राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनीशा, अनिष्का और तन्मय गजबीय, आप हैं डोंगरगांव से। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये बेहद खूबसूरत गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म चरस से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनना चाहा है सिद्धि गातापार से लावण्या, उपासना, देवराज, ओम कुमार साहू, पुष्पराज और प्रभुराम साहू। बाजारपारा बेमित्रा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। शीतलानगर दुर से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र और योगेश यादव नर्मदा धाम सुरसुली से। अमृता यादव, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी, प्रेरणा और डिम्पी यादव महावीर वार्ड भाटापारा से। दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा से। हथनी पारा भाटापारा से चुवाराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा, दुर्गा और दुर्गेश्वरी वर्मा। लच्छनपुर से रामजी वर्मा, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप।

कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, ग्राम डोंगरिया मलासखंड जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से डॉक्टर मुन्नालाल पटले, माधुरी पटले, याचना पटले और दिव्यांशु पटले।

0: और अब फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम यादें से दीजिए मधु को इजाजत। नमस्कार। अभी आप फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted "Ki ora Modi" to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Saioi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
2: We will be building on the things that we've already worked on. So, free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So, there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So, there are many, many aspects of it, including maritime security.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime, technology, defense, and cyber and AI domains. The two leaders also held a comprehensive exchange of views on developments in the Gulf and efforts to ensure peace and stability in the region. Dr. Jaishankar highlighted that the discussions reflected the trust and strength of strategic partnership between India and Oman. Meanwhile, the Omani foreign minister said that the long-standing maritime ties between India and Oman have connected their people for centuries and continue to provide a strong foundation for the partnership between the two countries. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan today reviewed preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. In a social media post, Mr. Meghwal said, a comprehensive review of the legislative business scheduled for the upcoming session was conducted and necessary guidelines were issued. Indian Railways has approved 206 crore rupees for coverage deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The Railway Ministry said the provision of Kavach version 4.0 will be implemented on the Rewari-Delhi and Shakurbasti-Bathinda sections of Delhi Division. The system has been designed to significantly enhance railway safety by preventing signal passed at danger incidents and train collisions. The Ministry said the system continuously monitors train movements, automatically applies brakes whenever necessary, permits trains to operate safely at maximum permissible speeds. It also supports reliable train operations even during adverse weather conditions such as dense fog. In football, Spain will face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. France has already stormed into the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final in Boston. In Wimbledon tennis, Germany's Alexander Zverev stormed into men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry in the semi-final this evening. The second-seeded Zverev produced a clinical performance to defeat Ferry in straight sets 7-6, 6-2, 6-4. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। कल प्रातः 5:53 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर और इसी फ्रीक्वेंसी पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।